0: आगे का संदेश क्या है?
1: मैं उस पर यह कहना चाहती हूँ संजय जी, अभी आपने फिर कैसे आपने फिर कहा प्लस के बारे में, उसके बारे में अबे गद्दीनों हमने एक ऐसे ही कुछ संदेशा पढ़ी हूँ कि अगर आप सफ़र पे जा रहे हो या गाड़ी को चलाने को जा रहे हैं, तो हमने पढ़ी हूँ कि आप गाड़ी चलाने से पहले पेशाब कर लो ताकि आप सफ़र अच्छी तरह से कर सके और हो आपको लोपक की ऐसा ना हो कि कभी काल के जो एक्सीडेंट होवे, तो अगर आपके यूरिन ब्लास लीक रहेगा तो उस पर जोर कम पड़ेगा, और अगर यूरिन ब्लास भरा होगा तो मुमकिन है कि वो फट सकता है, और वो जो फट गया आएगा उस एक्सीडेंट से तो इन वेन द ब्लूडिंग होगा, तो आप तो जानते हैं कि आप उस पर तो जल्दी से फॉर हॉल पर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप बाहर जाओ सफ़र पे तो दो बार या तीन बार जय बार हो सके, ताकि जैसे हम एयरपोर्ट पे जाए तो वहाँ पे भी आप टॉयलेट है तो वहाँ पे जाकर प्लस कर लो, घर से निकले गाड़ी पे तो गाड़ी चलाने से पहले भी घर पे प्लस करके तो निकले।
0: यानी कि हमें अपने आप को हल्का करके निकलना है।
1: बिल्कुल सही।
0: सुनो वालों, हम अभी और संदेश आपके लिए रख रहे हैं।

0: सुनने वालों, अब मैं संदेश को आगे बढ़ाती हूँ। देसी शौचालय के बजाय हमेशा यूरोपियन शौचालय का ही इस्तेमाल करें। यदि ना हो सके तो समय रहते समय बदलवा लें, इसकी तो ज़रूरत पड़नी ही है, अभी नहीं तो कुछ समय बाद। संभव हो तो कमबोर्ड के पास एक हैंडल लगवा लें, कमज़ोरी की स्थिति में इसे पकड़कर उठने के लिए यह ज़रूरी हो जाता है।
1: बबली जी, अभी आपने पढ़ी है कि देसी और विदेशी टॉयलेट,
0: हाँ जी,
1: शौचालय,
0: हाँ जी शांता जी,
1: उसका मतलब मैंने समझी।
0: ओ, उसका मतलब ये है शांता जी कि भारत में देसी शौचालय, जो पुराना स्टाइल का, जो नीचे बैठ के करते हैं।
1: अच्छा, हाँ, जो घुटनों पे जाते हैं।
0: हाँ जी, घुटनों वाला वो देसी है।
1: अच्छा,
0: और विदेशी है, यूरोपियन है,
1: जैसे आप चेयर के जैसे बैठते हैं।
0: सही बात।
1: ओ, ऐसे, अच्छा, तो ये है देसी और विदेशी। तो आपने कहा कि विदेशी वाला और सही है।
0: हाँ,
1: अच्छा,
0: अरे जो 55 साल से उम्र के लोग हैं उनके लिए।
1: ओह, वाकई में। हाँ,
0: बाजार में प्लास्टिक के वैक्यूम हैंडल भी मिलते हैं जो टॉयलेट जैसी चिकनी सतह पर चिपक जाते हैं, पर इन्हें हर बार इस्तेमाल से पहले खींच कर जरूर जांच पर रख लें। हमेशा आवश्यक ऊंचे स्टूल पर बैठकर ही नहाएं। बाथरूम के फर्श पर रबड़ की मैट जरूर बिछा कर रखें ताकि आप फिसलने से बच सकें।
1: हाँ, आप तो एकदम स्पष्ट से बता रहे हैं कि आज के दौर पर यह भी इस्तेमाल होता हैगा बुज़ुर्गों के घर में, और न सिर्फ बुज़ुर्गों के घर में। अगर आप समझे कि आपको भी दिक्कत है या खसौंथाइट प्रॉब्लम है, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबर मात एम बत कामर एन हो खस्तुल ओम ओम फैल खोपते सेते एन तो कन दुश आनकलेद आफ्त्रोख। और आपने कहा हैंडल यो पकड़ के आप अपने आप को टॉयलेट पॉट पे बैठ सकते हो और अपने आप को खींच कर खड़ा कर सकते हो।
0: सही बात शांता जी।
1: और जैसे आपने कहा कि उसका एक सोख नाप होते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो अद्रोह कहते हैं, तो आप पकड़ो पर बैठने से पहले वो हैंडल आप पकड़ के देखो या अभी वो ठीक से लगा है या नहीं, वन कभी कभी वो गिर निकल जाता है।
0: सही बात।
1: इस पर आप भी सावधान करना। जी हाँ, आगे बढ़े।
0: हाँ जी, जरूर। बाथरूम के ठीक बाहर सूती मैट भी रखें जो गीले तलों से पानी सोख लें। कुछ सेकेंड उस पर खड़े रहें, फिर फर्श पर पैर रखें, वो भी सावधानी से। अंडर गारमेंट हो या कपड़े, अपने चेंज रूम या बाथरूम में ही पहने। अंडरवियर, पजामा या पैंट खड़े खड़े कभी नहीं पहने। हमेशा दीवार का सहारा लेकर या बैठकर ही उनके पायचों में पैर डालें, फिर खड़े होकर पहने, वरना दुर्घटना घट सकती है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा, घटना घट सकती है, क्योंकि एफ अवेक्स तोड़ने से, एफ अवेक्स हेड बैलेंस

0: सुनने वालों, अब मैं एक संदेश और रख रही हूँ। एक मूल मंत्र सदैव उपयोग करें, नोन अर्थात नमक, भोजन के प्रति स्वाद पर नियंत्रण रखें, मौन, कम से कम आवश्यकता पर ही बोलें, कौन, मसलन कौन आया है, कौन गया है, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, अपनी दखलंदाजी कम कर दें। नोन मौन कौन के मूल मंत्र को जीवन में उतारते ही वृद्धावस्था प्रभु का वरदान बन जाएगी, जिसको बहुत कम लोग ही उपयोग कर पाते हैं।
1: आपने कहा कौन बबली जी, कौन यानी कि कौन आया कौन गया, तो हम डच भाषा में कहे बमोई है संजय जी, बमोई है। तो अवृत अवस्था में ये सब हम चाहते हुए पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तकरार होता है, तो ये हमको नहीं चाहिए। अगर हमको अपना अवदाह हंसी खुशी से जीना हो तो ज़रूर से हंसी खुशी से जिए और इस पे दखल ना दे। और आपने कहा नमक, नून,
0: हाँ जी
1: नून, हाँ, तो आपने एक और शब्द सीख ले सुनने वालों, नून का मतलब है नमक। नमक भी थोड़ा कम खाए, जाके आपके ब्लड बीपी ब्लड प्रेशर हो ब्लूट उस वो भी थोड़ा से कम रहे। और हम देखे हैं मौन चुप रहना,
0: सही बात।
1: कहते हैं देखते ही मौन रहना ठीक भी है, बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा से हमने समझा दी है जो अपने अपने मस्तिष्क के अपने दिमाग के हिसाब से हमने थोड़ा से समझा दिए, थोड़ा ताकि हम इसे और अच्छे से समझ जाए।

तो शांता जी, मैं एक संदेश और रखने जा रही हूँ, जो है कि जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करने जाना पड़ता है। अच्छा। हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब जब ऐसी घटना हुई है, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में ही मृत पाया गया है। ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि कल ही हमने इनसे बात की थी, ऐसा अचानक क्या हुआ या कैसे मर गया। इसका मुख्य कारण यह है कि रात में जब भी हम मूत्र त्यागने के लिए जाते हैं, तब अचानक या ताबड़तोड़ उठते हैं, परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंचता। यह 3.5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि जब हम पेशाब करने उठते हैं, तो हमारा ECG का पैटर्न बदल सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक खड़े होने पर मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता और हमारे हृदय की क्रिया बंद हो जाती है। 3.5 मिनट का प्रयास एक उत्तम उपाय है। नींद से उठते समय 0.5 मिनट गद्दे पर लेटे हुए रहिए, अगले 0.5 मिनट गद्दे पर बैठिए, अगले 2.5 मिनट पर पैर को गद्दे के नीचे झुलाते छोड़िए। यह 3.5 मिनट के बाद और हृदय की क्रिया भी बंद नहीं होगी, इससे अचानक होने वाली मौतें भी कम हो जाएंगी।

0: इतने सावधानी के बाद हमने यहाँ से सुने हैं सुने वाला ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और वो भी बबली जी के मुख अरविंद से, कि हम रात में जो पेशाब करने को जाए या पानी पीने को उठे बैठे तो तुरंत नहीं खड़ा होना चाहिए, जैसे बबली जी ने अभी पढ़ के बताई है। कारण कि जल्दी खड़ा होने के वजह से हमारे सिर पर खून नहीं पहुंचते हैं, तो इससे हम चक्कर खा जाते हैं और हम गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा हम गिरते हैं कि हम पता नहीं किस तरह से हम गिरे, हमें कहाँ चोट आए कि हमारा मौत हो सकते हैं। और जल्दी से ब्लूत हेरसन में जब ब्लूत ना पहुंचे तब दौरा भी पड़ सकते हैं। ऐसे तो हमने सुने कितने मिनट के आपने कहा, 3.5 मिनट में हो जाते हैं,
1: 3.5 मिनट,
0: 3.5 मिनट में ये ऐसे घटना हो सकते हैं। तो आप जो सुने हैं सुने वालों, तो आप इस पे जरूर से सावधान करें। ये मेरे लिए भी लागू है, आज नहीं तो कल हमको भी ये सब इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ कहना है संजय जी?
2: कहना तो कुछ और नहीं, क्योंकि इन बातों को सुन करके हमारे लिए भी लागू हो सकता है, क्योंकि ऐसे हम ध्यान देंगे और हमारे सभी सुनने वालों इस बात को सुन करके, लोग क्योंकि लोग जानते हैं इन बातों को, लोग जानते हैं इस बातों को, और फिर भी हर साल में जब देखा जाए कि कितने और लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं ना, अचानक खड़े हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और जैसे कि अभी आगे में मैंने कहा था भी कि और सिर कहीं और ऐसा लग जगह लग जाता है, तो आपको और ये कभी बहुत महंगा हो सकता है। दोस्तों, हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ और भी संदेश है ना बबली जी?
0: उसके मैं ये कहना चाहती हूँ संजय जी, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है कि आप ऐसे अचानक से थरा हो जा, ताकि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए, ये हमारे लिए भी है, नवयुवक के लिए भी है।
2: तो शांता जी, ये कहने के तात्पर्य है कि आप घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं, और सीधे कह दे तो कि क्या हम भी बुजुर्ग हो गए? क्या
0: बुजुर्ग तो नहीं हो गए हैं, पर इस पे सावधानी रहे कि
2: जरूर जरूर हमारे हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी कि इस बात को ध्यान देना, और ध्यान इस तरह से देना है कि ये मत कहना कि फाहुन रेडियो के द्वारा आप सुन करके और ये संदेश को नहीं पहुंचा होगा आपको। तो हमारा जो ये डायरेक्टर जो हम सब के लिए समय निकालते हैं और ये कार्यक्रम को हमारा खोजी सेना जो बना करके हम सब के लिए रख देते हैं, तो हमें बस आपके लिए प्रेजेंटेयर करना है, पर संदेश उसमें क्या निकालना है ये आप पे रखा जाता है।
0: हम ये भी बबली जी से पूछना चाहती हूँ, बबली जो पढ़ के हमके सुनाए, पर बबली आपका क्या विचार है इस पर?
1: मेरा तो ये विचार है शांता जी, पहले मैं अपनी बात ही करती हूँ, दूसरों की तो बाद में करूँगी। हाँ, क्योंकि सबको ध्यान देना चाहिए, मेरे को भी ध्यान देना चाहिए कि रात को जब उठते हैं तो कैसे उठें, सावधानी कैसे बरतें, और कैसे कैसे सब काम करें।
0: अच्छा जी, हाँ, सावधानी तो हरदम अपलेतन से इन अपालस याद आते सेल बलांग रहे इन आला लिफ्ट एट आला कोतखुरी।
1: सही बात
0: जी।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और संदेश में रखा गया कि हमारे बुजुर्गों जो और जा करके किस प्रकार से कैसे और कुछ चीज़ों से बच सकते हैं, उस अंतर्गत में आज का संदेश जो स्वस्थ और ठीक रखने के लिए और जो रखा गया, हम जो शांता जी इस पे जब देखा जाए कि सूरीनाम में कैसे और किस प्रकार से, क्योंकि सूरीनाम में शायद फित जो लोग रहते हैं ना, तो गर्मी में गाय आदि को जानते हैं खेत में चराने को या लाने को, तो शायद उस तरीका से लोग और फित भी रह सकते हैं ना।
1: हाँ संजय जी, आप कहते हैं ये तो आज के दौर में नहीं होता है, पहले में होता था
0: जरूर। आज हाँ, के दौर में
1: धान लगता था, गाय सब चराने जाते थे, खेत में कार्य होते थे, पर आज के दौर में ये बहुत कम हो गए।
0: बिल्कुल, वहाँ पे भी और सभी के घर पे गाय नहीं होते आजकल,
1: नहीं,
0: और सभी के घर पे धान भी नहीं बोया जाता।
1: नहीं बोया।
0: तो हाँ। बबली जी ये बताइए, क्या आप भारत में धान और गाय आदि आपके घर पे होते थे या नहीं?
2: हमारे घर पर तो नहीं थे, हम दिल्ली में रहते थे शांता जी।
1: अच्छा।
2: अपनी नानी या जाते थे या अपनी फुआ या, तो वहाँ पर हमने देखा है गायें थी, चावल लगते थे, कपास और वो गन्ना।
1: हाँ सही करी।
2: हाँ जी, और अब तो मैंने सुना है सूरजमुखी, वो भी उसकी फसल भी होने लग गई है पंजाब।
1: सोनू ब्लूम।
2: हाँ जी,
1: सोनू ब्लूम तेल, तो बहुत अच्छा है।
2: तो जब हम जाते थे तो हमारी नानी ने कहना और मामी ने, अरे हमें नहीं हमारे भाइयों को, तो कि जाओ अपने मामा को खेत में
1: खाना ले जाओ।
2: हाँ। तो वो एक एक चीज में, अरे डोलची कहते हैं पंजाबी में, उसमें पानी भर लेते थे और खाना वो एक टोकरी में, तो ऐसे मांचे में तो लेके जाते थे। तो वहाँ देखना, तो मामा ने फिर वहाँ काम करते, और जो बिहार से भी लोग जब फसल कटती थी तो वो लोग आते थे, उनके रहने के लिए टेंट बनाए जाते थे, वो उसी में रहते थे उतने एक दो महीना और सबकी फसल कटवाते थे
1: ऐसे।
2: हाँ
1: मैं आपके आप बता रहे हैं ना, मैं आप समझी देख रही हूँ जैसे।
2: ओ अच्छा अच्छा
1: जी, वो सब नज़ारे।
0: शांता जी ये बात के हमें भी कुछ ख्याल आ गया कि पहले जब हम लोग के सूरीनाम में और धान बोया जाता था ना, तो हमारे जो जाबी जो यफान रहे होते थे तो वो लोग भी आ करके और ऐसे ले लेते थे कि एक गट्टा बनाया जाता था, गट्टा कहते हैं ना जहाँ पर धान को बोया जाता था, तो एक गट्टा को और अपने कितने प्राणी यानी कि मलाई जो हम कहते हैं, तो वो ले लेते थे उसे और कहनी कैसे देवरों की चाप कहते थे, और उन्हें बो करके और फिर खत्म करके फिर जाते थे।
1: अच्छा। हाँ हाँ
2: जी शांता जी, एक जगह पे वो पहले घास की तरह होता धान, तो हाँ, हरा वाला कच्चा, हाँ, उसे वहाँ से काट के हाँ, तो गीले खेत में वहाँ पर पानी भर देते रात को, तो वहाँ पर फिर एक एक ऐसे लगाते हैं।
1: हाँ वो तो, पहले सूरीनाम में भी होता था।
2: हाँ तो मैं अपनी बात हाँ, बता रही हूँ कि जो हम देखते थे अपनी हाँ, नानियाँ जाके वो बता रहे।
1: हाँ ना आप बता रहे तो मेरे को सूरीनाम वाला नज़ारा याद आ जाती है
0: कि एक एक गो और जा करके हाँ, सभी लगाते थे और
1: लाइन में ऐसे स्त्री या पुरुष साथ में बस लगाते थे।
0: हमारे सुनने वालों भी इस समय जो सुन रहे हैं, कुछ जो हाँ, अपने जीवन में धान को लगाए हैं, तो इस बात को शायद उसे भी ख्याल आ गया।
1: हाँ आज के दौर में नहीं लगता है, पहले खंडाल में ना लैदिंग में कॉमिसारस बैठिंग बैग में यहाँ पे ये चले इसे या शहर को आने जाते, तो उस वो गली में भी लैदिंग में भी ऐसे पहले धान सब लगाते थे। आज नहीं लगते हैं, पर आज जो हम बात करते हैं आज के नवयुगों के साथ है, तो मैं जो मैं गई थी तो मैं बात कर रही थी कि पहले यहाँ पर सब में धान लगता था, तो वो लड़का जो लड़की तो मेरी तरफ ऐसे देखते थे, ताकते थे आप क्या कह रहे हो?
0: बात यह हो गया कि सब अब सहर बन गया ना, सब फरहार दवेख हो गया है। और जरूर जब पहले 400,000 आदमी सूरीनाम में था तो अब लगभग 600,000 से ज़्यादा भी हो गया होगा। और तरक्की हो रहा है, देश आगे यानी कि परिवार आगे बढ़ते गया है, तो जो जो जमीन होते थे उसमें भी लोग रहने लगा और इसी प्रकार से आगे बढ़ते गया ना।
1: हाँ, वो तो उस दौर पे तो सब आगे बढ़ते गए, पर जो जो नज़ारा पहले था खेती बाड़ी के, वो कम हो गया।
0: जरूर, हमें भी इस बात को सुन करके अच्छा लग रहा है कि पहले का और अब का समय पर, समय पे ध्यान देते हुए हम देख रहे हैं हमारे प्लेयर पे वही गीत और चलने वाले हैं।

इस सुंदर गीत के साथ हमारा यहाँ पर आरंभ जो यहाँ से समाप्त होने को आए गए प्रोग्राम, तो समाप्त करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि वच साइड सोल्यू ओस्तन वच ऐसरा त्रक्य आन वच खेफ सोल्यू ओंतफांगन एन वच खलूफ्त क्रेह गदान। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम स्वीकार कीजिएगा।

नफरत तपती धूप है भाई, प्यार ही शीतल छाया है। नफरत देती दुख ही दुख, तो प्यार ने सुख पहुंचाया है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

सुनो वालों, यहाँ तक था कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो अपने समाप्ति की सीमा पर रहा करके पहुँच चुके हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

तड़पता रहा दिल हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खेमई जी और बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहे गए तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

हिंदुस्तानी पर आप चून है और यहाँ सारे में होता है क्या हुआ तेरे और दर भड़े गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से।

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहोन हिंसा रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से 5 आपको तार करना है।

तारों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका केकेई के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर केके पैदा हुआ 23 अगस्त 1968 इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है टमारा। मलेशिया से ओडर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना केके ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था निकटक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे किसी म्यूजिक और प्लानिंग कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया यानी फेरिस्ताइट दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्ताइट में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया एडवर्टेंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स किकी ने बनाया। लेस्ली लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीह में किकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें किकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे किकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

रिकॉर्डिंग सेशन 90 में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालाद वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाए, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तनहा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला। सी साइन अवार्ड 2007 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख की बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में, एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में, इन तक मई 2002 के बाद है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं, लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

सालों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप ट्यून है, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने ने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आइए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, ग्यारह फैफन शैस्तक तो निगरी सीफन तक जबले रेस खन्ना नहीं कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरद जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप ट्यून है

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावे कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुनाता है, सुनिए।

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों, जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार। पास हो गए तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से सुने।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा।

सुनो वालों के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे। सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं। आज जिनका जन्मदिन है बधाई देना चाहता हूं। जो सफर पे जाने वाले हैं उन्हें हम शुभ यात्रा कहते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं अभी निकलने के लिए अपने नौकरी को, और उन्हें हम यह कहते हैं कि दो दो हाथ दो दो पाओ और साथ में दिमाग से काम करना। जो हमारे देश में यात्रा पे आए हैं, अनफाइन फकांसी तुखवेंस, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां दुनिया के हर एक प्रांतों से लोग आते हैं। अन लैंड फॉल मेट म्यूजियम्स कंस और कल्चर इस देश में। जिनका घर आज कुछ कार्य है कुछ कारज है उन्हें हम भी बधाई देना चाहता हूं। सभी बच्चों जो तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और जो चले भी गए हैं तो उन्हें हम एन फाइन डाग टुगेवेंस। नामंस द हेले फाहन क्रू। सुनने वालों अभी हम कार्यक्रम भजन जो औखतन प्रोग्राम हमारे होते हैं उस ओर बढ़ेंगे। हमारी पहला भजन जो कनाडा टोरंटो और अम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर यू हिपोटेकन एंड फिनांशियरिंग। और यहाँ पर आप मालूमात कर सकते हैं, कुछ भी आपको हिपोटेक और फिनांशियरिंग के बारे में जानकारी लेना है तो जरूर आप फोन कीजिए 06-2513-6374। एक सुंदर सा भजन जो हमारे देश के कलाकारों ने और लिखे है सूरीनाम में जाकर, जो 150 साल पहले हमारे पुरखों जो जाकर के सूरीनाम में गए और उस समय अपना कला भी लेकर गए थे और कितने और हमारे लिए छोड़ भी गए। तो हम एक अपना देश के सूरीनाम के एक गायक का भजन आपके लिए और प्रस्तुत करता हूँ।

इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मन की शांति से बड़ी हो। सुनो वालों, ये भजन जो स्पॉन्सर करने वाले हैं कनाडा और टोरंटो एंड आम्स्टरडम नेबल पैलेस फॉर ऑल यू हिपोटेकन एंड फिनांस शेयरिंग।

Den Haag, Vorenpark, Leidseveen, Anand Sharma, Groothandel, BV. Info Anand Arjun Sharma, jinka tarka nummer hai 0655732867. उनके ओर से एक भजन जो हम चलाने वाले हैं आपके लिए।

किसी को समझने के लिए भाषा ही हमेशा आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। सुनने वालों, ये जो भजन चलाया गया दनाख फोर पार्कलाइट्स कफेन आनंद शर्मा जी की ओर से ग्रोथ हैंडल बेफई और जिसका तार का नंबर है 06557328 67। कोई भी और सामान आपको चाहिए ग्रोथ हैंडल अर्जुन शर्मा।

अगला भजन जो हमारे और स्पॉन्सर किए गए प्रोग्राम में रखा गया है वो है दनहाख लाइट्सफेन सुंदा खुरुंतन एंड फ्रॉयड हांडल, जिनका मालिक श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी है। और अगर कुछ भी आपके उससे और मालूमात करना है तो उनका तार का नंबर है 0622795862। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम आपके लिए और प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

सुनने वालों, इस बात को शायद आप कभी सुने होंगे, कि मां बाप के पास बैठने से दो फायदे होते हैं। आप कभी बूढ़े नहीं होते हैं और मां बाप भी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये समझ के समझने वाले बात है। दना फोर पार्क लाइट्सफेन सुंदा ग्रुंटन एंड फ्रॉइड हैंडल, जिनका मालिक परशुराम मोहलाल जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। सुनने वालों, अगला भजन जो देहा एर बाउ एंड ऑनरहाउस बद्रैफ, जिनका मालिक श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी है, उनका तार का नंबर है 06260042241। कोई भी ऑनरहाउस और बाउ वर्कशॉप है के लिए अगर आपको और मालूमात करना है तो जरूर उनके आप फोन कर सकते हैं।

इस भजन का स्पॉन्सर करने वाले श्रीमान देव नारायण हरिदत्त रोहित जी ने, जो Den Haag Voorpark Leidschoveen DHR बौ एंड ऑंडरहोट्सबेदरीव का मालिक है। सुनने वालों, अगला भजन जो Den Haag Mekkeenstraat 6 हिंदू बासस्कूल फाहुन वरेनिगिंग अलगमेने हिंदू ऑंडरवेस नेदरलैंड की ओर से, जो हमारे लिए और ये सुंदर सा भजन स्पॉन्सर किए हैं।

संसार के सबसे सुंदर और प्यारा संबोधन सुबह की राम राम ही है। सुनने वालों, ये भजन के स्पॉन्सर किया गया है बास स्कूल फाहुन की ओर से, जो दिनहाक में कई सरा छे पे है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी ऑनरवाइजर्स ऑनरवाइजरसन, सभी तेरक्सी की ओर से सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनने वालों, अगला भजन जो सुरीनाम लिफोर्नो मेनकंदाम हुक इंदिरा गांधी वेग से, श्री भक्ति राज शिव पार्वती मंदिर, वहां का सभापति सुभाष महावीर जी है, जिनका तार का नंबर है 00597867577। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

किसी ने बहुत अच्छे कहा है, अपने बुजुर्गों की कदर करो, क्योंकि आपने भी हमेशा जवान नहीं रहना। सुनने वालों, ये भजन का स्पॉन्सर किया है सुरीनाम लिफोर्नो मेनकदाम से, हुक इंदिरा गांधी वेग, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर, जिनका सभापति सुभाष महावीर जी है, उनके ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला भजन दनहाख माताजी लिलियन मोतीराम जी के ओर से, उनके ओर से एक सुंदर सा भजन का मांग किया गया है।

दो ही चीजें ऐसे होते हैं जिसे देने में किसी का कुछ नहीं जाता है, पहला जो मुस्कुराहट और दूसरा जो दुआ। ये भजन के स्पॉन्सर करने वाले दनाख क्नुतल स्त्रात तीन हिंदी प्रचार संस्था फैमिली चांद गुरबिन की ओर से और चलाया गया। कोई भी और प्रश्न रखना है अपना भाषा अपना संस्कृति के अंतर्गत तो भाई चांद जी को और जरूर मालूमात कीजिए।

मोक्ष क्या है, ना किसी को पाने की चाह है और ना किसी को खोने का डर है।

0: भजन जो खमीनत रात्सलित लैन बाबू राम जी के ओर से। दनहा खमीनत रात्सलित लैन बाबू राम जी के ओर से।
1: चादर

ये भजन जो चलाया गया खमीनता रातस्लित लैनो बाबूराम जी की ओर से। हमारा अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक माकरस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की ओर से ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, ये भजन जो स्पॉन्सर किया गया है रोतरम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोतरम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से ऑन द लीडिंग फन पंडित मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी की ओर से। यहां तक जो भजन स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाया गया, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपकी ओर से भी एक भजन चलाए जाए तो जरूर हमारे रेडियो आत्मिश्रासी से मालूमात कीजिए। हम सब हर समय तैयार रहते हैं आपकी सेवा के लिए।

सुनो वालो, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है जो डेन हाग शहर से हॉलैंड से और ब्रॉडकास्ट किया जाता है। चाहे गर्मी या सर्दी, हर समय रहता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो आपके साथ। मैं हूं संजय और कुछ समय के सब कुछ समय तक मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा।

सच्चे मन के सच्चे ये सुंदर सा गीत जो फाहुन रेडियो द्वारा आपको सुनाया गया, आपको एक शुभ दिवस, एक ऐसा दिन हुए जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप के लिए, कम से कम अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तों, नाते के भूलना नहीं। हम अगले गीत जो चुन करके रखा है, 1981 में निकाला गया ये फिल्म, जो कुछ उस समय पे और ये फिल्म को देखे होंगे,

कुमार गौरव और विजयता पंडित ने इस फिल्म में काम किए। 1981 के ये फिल्म, जो फिल्म का नाम लव स्टोरी से निकाला गया, ये सुंदर सा गीत। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगले गीत का बोल क्या है कि अभी तो कोई गुस्सा हो गया या गुस्सा हो गए है तो उसके लिए क्या होना है। कहते हैं बात बिगड़ जाए तो क्या होगा,

गीत का बोल जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर पल आनंद ले, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती है। हम अगले गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत जो खुशियों से भरे हुए है,

ये सुंदर सा गीत जो कॉन्सर्ट में गाया गया और ख़ास करके गाया गया तो हमारे अनाउंसर साथी शांता खेमाई जी और उनके आवाज़ में हम सब सुने। दोस्तों ये बात है कि आज अगर हर पल का आनंद ले, हर पल का आनंद ले, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करती है। इस पर ध्यान देना कि हर पल हमें आनंद ही आनंद लेना है, खुशियाँ कभी इंतज़ार नहीं करते हैं दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। और खुशियाँ कभी बताकर भी नहीं आते हैं और जाते हैं।

आना जाना का जब बात हुए तो क्यों ना हम उसे संगीत में सुनते हैं।

ख्वाब में जो कुछ लोग याद रह जाते हैं और उनमें से कुछ लोग को भूल जाते हैं।

गुलजार जी ने बहुत अच्छे लिखे हैं कि हंसते रहेंगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलता। हंसता रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो भी आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सुनने वालों, जैसे कि मैं देख रहा हूं, हमारा कुलेखा साथी स्टूडियो तोई में उपस्थित हो गए हैं।

आज एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम थोड़ा से हंसिए, क्योंकि जैसे गुलजार जी ने लिखे हैं कि आंसुओं का जगह आंखों में भी नहीं रहता है, वो भी टपक जाते हैं।

तमन्ना की तमन्ना लता मंगेशकर जी और किशोर जी का आवास में हम सब इस गीत को सुनेंगे।

पन्ना की तमन्ना एक फिल्म जिसमें देवानंद जी और सीनत अमन ने अपने काम दिखाए। ये सुंदर सा गीत जो लता मंगेशकर जी और किशोर जी ने अपना आवाज दिए

तुझे देख कर मेरा दिल खोने लगा, ये सुंदर सा गीत को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना रिश्ते किए ही रिश्ता निभाते हैं और शायद वही लोग जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं। बस यहाँ तक था हमारे कार्यक्रम, जो यहाँ से कार्यक्रम हमारे कुलेखा साथी जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, मैं यहाँ से आपसे विदाई लेंगे। आशा ये रखता हूँ कि सुबह से मैं आपके साथ जुड़े आ रहूं सुंदर सुंदर और भजनों के साथ। फिर कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ न्यूज़ और कमर्शियल के ओर बढ़ेंगे।

और ये जरूर कहूंगा कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस, een fijne dag toegewenst.

आज मैं ऊपर और जमाना है नीचे, इस बार हमको सुना दी है कविता कृष्णमूर्ति जी, साथ दे रहे थे जी हाँ वही मशहूर सांगर कुमार शानू जी।

सोनू निगम, अलका याग्निक, अनु मालिकी, दीवाना है ये मेरा दिल, और बाकी में इसलिए दीवानगी की तरह मैं भी उपस्थित हो गई हूँ आपके सेवा करने के लिए। भोजन भोजन भोजन यानी कि खाना पकाना। भोजन बनाते समय भोजन बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ से मेरे पास कुछ टिप्स है और सोचती हूँ कि आपके साथ ये हम डेल कर ले। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से सुनिए कि भोजन बनाते समय ना करें ये काम, और वो कौन सा काम है। तो पहला ये है कि खाना बनाते समय कभी भी खाना नहीं चीखिए, और ध्यान रखे मेरे प्यारे सुनने वालों कि खाना बनाते समय जले नहीं, कि खाना ना जले। खाना जल जाने से राहु ग्रह का प्रकोप होता है। नौ ग्रहों में से राहु ग्रह भी एक है। खाना जलने से राहु का प्रकोप होता है। और ये अवश्य जरूर से इस पर और ज्यादा ध्यान धरे, तो वो ये है कि खाना बनाते समय सदैव अपना मन जो है वो साफ रखे। क्यों साफ रखे? क्योंकि आप जिस समय पे आप भोजन तैयार करते होगे और आपका मन जो भी सोचेगा वो सब त्रेलिंग जो है वो खाना में जाएगा, और जो खाएगा वो खाना वो उनके शरीर में वैसे ही तरंग भी उत्पन्न होगा। तो सदैव हमेशा खाना बनाते समय मन को साफ रखे, या हो सके तो कोई भजन धर दे, मंत्र धर दे, और मंत्र भजन जो ना हो तो मन ही मन में ऐसा कुछ गुनगुनाए ताकि वो तरंग वो खाना में जाए। और रोटी के ऊपर ये लिखा है कि रोटी बनाने से पहले कुछ बूंदे दूध के तावा पर डालने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और कभी भी टूटे फूटे बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या होता है तो मैं जरूर से बता देती हूँ कि कभी टूटे फूटे बर्तन में खाना बनाना नहीं चाहिए, इससे बीमारियाँ और दरिद्रता आती है। उदित नारायण, अलका याग्निक, जिसे हम सुनेंगे चुपके से कोई आएगा। बहुत प्यारा गीत है आपके लिए स्पेशल।

हाँ तो बता दो आप क्यों प्यार किया है, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। इस बार हम मिलकर सुनेंगे उदित नारायण जी की आवाज़ में और विभा शर्मा जी की आवाज़ में।

आपने सुन ले अलका याग्निक जी से और ना उदित नारायण और विभा शर्मा के आवाज में कि इश्क हुआ और भला बताओ कैसे हुआ।

0: उदित नारायण जी सुना दी कि हो नहीं सकता और क्या हो नहीं सकता ये गीत में वो गाकर और यहाँ हम सभी को सुना दी है। इसमें स्टार कास्ट थे सोनाली बेंद्रे जी और जी हाँ अजय देवगन जी। अच्छे अच्छे गीत आपके लिए चुनकर लाया जाता है आप ही का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: गलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

तुझे प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे अवश्य अवश्य। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप बहुत सारे प्यार पेश कर रही हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और यही आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जरूर से खुश होंगे। कहते भी कि करो शुरुआत मधुर वाणी के साथ।

लता जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए है मेरे पिता के थाली में से पहला निवाला किसे खाना चाहिए। पिता के थाली से पहला निवाला किसे खाना चाहिए, तो आपको बता दे कि पिता के थाली में से पहला निवाला अगर बेटी खाती है, जी हाँ बेटियाँ, आपके घर में बिटिया है और पिता जो भोजन करने बैठे, तो पिता के थाली में से अगर बिटिया खाती है तो पिता के ये तीन चीज़ें बढ़ती है। माना जाता है कि जब पिता भोजन करते हैं तो बेटी को सर्वप्रथम पहला निवाला उसके थाली में से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पिता के आयु बढ़ती है। ऐसा करने से यानी कि पिता के थाली से अगर बेटी पहला निवाला खाता है तो पिता के आयु बढ़ती है और पिता के रोजी रोजगार जो है उसमें भी वृद्धि होती है। और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए कि पिता के थाली में से पहला निवाला आप अपना बिटिया अपना कन्या को खवाएं।

0: फिल्म सागीर से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पिक्चराइज किया गया है, रिलीज किया गया है 1967 में। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो,
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

सुंदर कितनी सुंदर से सुना दे लता जी की। कितना आसान है कहना भूल जाओ, पर इतना आसान तो नहीं है ना। आप मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप शायद अपने जिंदगी में भी ये सब महसूस करते हो और मेरे ख्याल से भी मैं माँ किए होगे, वो ये है कि देखो, कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में, कुछ लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना ही चाहते हैं, पर जब उनका मन करता है तब, जब उनका मन करता है बस तब तक लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। जब तक उनका मन करता है बस तब तक। कभी कभी कभी जताएंगे कि तुम अपने हो, हाँ कभी कभी वो लोग तुम्हें जताएंगे कि तुम अपने हो, और कभी ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसे आप उनके, उनको तुमसे मतलब कुछ ही नहीं। एक दिन ऐसा बात करेंगे जैसे उनके लिए तुम ही सब कुछ हो, हाँ कभी कभी ऐसा बात करेंगे कि तुम उनके लिए सभी कुछ हो, और अगले पल, हाँ अगले पल तुम्हें कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसकी सलाह ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि जो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके, हाँ जी हाँ, जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, हाँ जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना, क्योंकि जितना तुम इसमें फंसते जाओगे ना, बाद में उतना ही मुश्किल होगा बाहर निकलने में। तो आप समझदारी से काम लेना और फरकना परखना अपने इर्द गिर्द में कि आपके साथ ऐसे तो नहीं होता है। आप जितने जल्दी इनमें से निकलोगे आपके लिए उतनी ही फायदा होगा। Anders wordt u gewoon keer op keer gemanipuleerd en dat verdienen wij niet.

फिल्म लापरवाह से, फिल्म लापरवाह से मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जिहाने खती एनन ताख्तक में ये पिक्चराइज किया गया है। किशोर दाजी की आवाज में साथ दे रहे थे चंद्रानी मुखर्जी। साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ कि कलयुग के साथ करवे सच, कलयुग के साथ करवे सच वो ये है। पहला ये है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। कई परिवार में ऐसे भी होता है कि बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ ना देगा। आप जिसे खास, जिसे आप खास समझोगे वही दुख देगा, आप जिसे अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा, वही आपको दुख देगा। स्त्रियां भी विवाह करने से इनकार कर देगी, स्त्रियों भी विवाह करने से भी इनकार कर देगी। और ये भी एक कड़वा सच है, अब वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों की प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। ढोंगी व्यक्ति जो है उनकी समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा, ईमानदार आदमी पेट भी ना भर पाएगा। और बच्चों और माँ बाप में नहीं बनेगी।

एकदम टॉप, एकदम टॉप। बहारों की बारात आ गई। फिल्म का नाम यकीन। आप यकीन न मानो, बल्कि फिल्म के नाम ही यकीन है। यकीन फिल्म 1969 में पिक्चराइज किया गया है। सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनो। और फिल्म यकीन में धर्मेंद्रा जी शर्मिला टैगोर के साथ, और गीत का गायक जो है आपको तो मालूम हो गया है, ना मालूम है तो यहाँ से हम बता देते हैं, मोहम्मद रफी जी। और गाना के लिखक है हसरत जयपुरी और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। इतने बढ़िया बढ़िया गीत हमारे खातिर आज के दौर पर और छोड़ के चला गया है। Het is gewoon voor eeuwig. कई पीढ़ी जो अभी आगे में आएगा, वो सब ये इनका लुफ्त जरूर से उठाएंगे। In het meeste geval wordt het liedje gewoon in een nieuw jasje gestoken. Op een andere soort muziek, maar dan wordt het wel in leven gehouden op zijn of haar manier. Maar het begin is toch wel ergens anders. Fijne vrienden zijn als een zonnestraal en warme, die warmte brengen keer op keer in elk moment. Groot of klein, met jullie ben ik nooit en nooit alleen.

samen lachen, samen dromen, hand in hand de weg verkennen. Dankbaar voor jullie, dankbaar voor jullie, dag en nacht, vriendschap puur en krachtig gebracht. एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों मोहम्मद रफी जी की आवाज में और म्यूजिक डायरेक्टर है एक बार फिर शंकर जय किशोर और गीत का बोल आप खुद ही सुनो।

दूर दूर से सुनते हैं, पसंद करते हैं। आपका उत्साह मेरा जुनून बढ़ा देता है, यकीन मानो, सच कहती हूँ, है ना? पॉजिटिव देंकन खात नीत ओवर एल्क केयर, पॉजिटिव देंकन खात नीत ओवर हेट एल्क केयर फरवाख्तन दैट हेट बेस्ट गेबर्ट, maar over het accepteren dat wat er ook gebeurt het beste is voor dit moment.

सच अपने जो है ना वो यकीनन सच ही होंगे। ये जरूर कहना चाहती हूँ जो आवश्यक थे हमको अपना जीवन में धारण करने के लिए, इसे जरूर से हम अपना जीवन में धारण करें। और वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि वख्नित यह हेल लेफन अपम परफेक्ट लेफन अम परफेक्ट हर्स अम परफेक्ट पार्टनर अम परफेक्ट बान हैद बस्तात नीत नो नो हैद बस्तात नीत आलस वारफा यह फरवाख दैट इट परफेक्ट इज हैव सन eigen gebreken die heeft zijn eigen gebreken. Het gaat erom de goedheid in alles wat je tegenkomt te vinden en het beste van jezelf te geven. Zo is dat, mijn lieve mensen. Zo is

0: जाते जाते ओ जरा जाते जाते
1: फिल्म ललकार से निकाल दिया गया है ये सुंदर सा गीत। जरा मोर के तो देख ओ कुड़िये, कुड़िये कहते हैं लड़की के, लड़की के दावे त्यू दात ओक ओक कुड़िये।

0: मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में आपके लिए सुंदर सुंदर सा गीत पेश किया जाता है। और ये सभी गीत आप जो अभी तक सुने हैं ना, ये सभी धर्मेंद्र जी के एक्टेड हुक किया गया है। ये वाला भी
1: ओ

से फरमा दी है रफ़ी साहब जी ने कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि आप अपने मुख द्वारा अपने मुख से ही अपना ही कर्म भी बना लेते हैं। Alles wat je doet, doet u voor jezelf. Als je iets goeds doet, doet u ook voor jezelf. Als je iets slechts doet, doet u ook voor jezelf. U plant gewoon uw eigen toekomst. Takdir aap apne se aise banate hai, to aap aisa na kare. Aur na sirf aapko main kehti hoon, ye mere liye bhi utne hi zyada powerful manti hoon. सब कोई धरती पर आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार और अपना अपना कर्म को भोगने के लिए। एक सुंदर सा गीत यहाँ से फिर हो जाए, और वो भी धर्मेंद्र जी के एक्ट किया हुआ फिल्म है।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो चंद्रयान 3 उस अंतर्गत में अभी हम सब कुछ संदेश आपके लिए रखने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमई जी, बबली आसरा जी और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राजेंद्र सिंह जी भारत से। तो हम अभी आपके और साथ मिलते हैं, पहले शांता खेमई जी जो अपना एंट्री लेते हैं, फिर बबली जी, फिर राजेंद्र सिंह जी, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: सुनने वालों की खिदमत में भी मेरी शांता की बहुत प्यार भरी राम राम है। हम आपको भी स्वीकार कर रही हूँ इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगी कि मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बात में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। इसी के साथ हम आपको स्वागत करती हूँ। नमस्कार हो जी।

स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी ना किसी पल यादों में आ ही जाते हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हर बार की भांति इस बार भी हम अपना कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश लेके आए हैं, और ज्योति का प्रकाश का उद्देश्य यही है कि हम नई नई जानकारी सब लोगों तक पहुंचाएं। और इस बार की जो जानकारी है वो हमारे भारत के जो इसरो चंद्रयान 3, उसी बारे में आज बातचीत रहने वाली है कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से कैसे, पूरी जानकारी हम उसमें देंगे। और उसी जानकारी के अनुसार सब लोग रेडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सक्सेसफुल भारत का हो गया, और पहली बार साउथ पोल पे पहला चंद्रयान मिशन रहा। इस बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए एक सुंदर सा संजय जी, जो हमारा कार्यक्रम रहता है, जो लोग उदास बैठे हैं,
1: उदासी मन है, बिल्कुल आप कह रहे हैं राजेंद्र जी, आपको स्वागत है एकदम वहाँ भारत से एकदम स्टूडियो तक। जिसके अभी उदासी मन है तो क्यों ना उदासी मन को थोड़ा से दूर किया जाए। तो शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं, कोई भी बटन वो दबा देते हैं और गीत चल पड़ता है।

0: राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने कि आज हम सब जो भारत एक ऐसा ये यानी कि ऐसा तरक्की किया है कि एक इतिहास बन गया है और बन करके और ऐसे आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि राजेंद्र जी, पहले तो हम आपको बधाई देना चाहता हूँ कि भारत ने और जा करके द्रियन ट्वेंतख अगस्तस ट्वेई दौसन द्रियन ट्वेंतख जो जा करके और दुनिया पे जो चौथा देश है अपना और जहाज जो और चंद्रमा पे उतार चुके।
1: बहुत बहुत बधाई पूरी दुनिया को भारत की तरफ से, क्योंकि दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल पे पहली बार किसी ने चंद्रयान उतारा है तो भारत ने, तो इसको कहेंगे कि साउथ पोल पे पहला देश है।
0: ये पहला है जो और जा करके और
1: पहला है, बाकी तो इस तरफ उतरे थे पहले, लेकिन जो पहला देश साउथ पोल

0: सरो है श्री हरि कोटा में, वो इसी काम में लगा है। उसका काम है नई नई खोज करना। जो ज्योति का प्रकाश है, जो रेडियो है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम है, उसका काम है ये जानकारी रेडियो के माध्यम से हर घर में सब लोगों को देना।
1: तो राजेंद्र
0: यही हमारा एक तय है जी।
1: नहीं बस भाई कुछ चुटकुला उसमें छोड़ना चाहता था क्योंकि कुछ व्हाट्सएप बरेख बनने लगा है और लोग ऐसा ऐसा व्हाट्सएप बरेख बना रहे। कोई कोई तो पूछते हैं कि अब भारत जो चंद्रमा पे और जा करके और चंदा मामा के पास जाकर पहुंच चुके हैं, कोई तो ये कहते हैं कि भाई अब कहीं करवा चौथ कैसे वहां मनाया जाएगा और अपने मामा से मिलने को, यानी कि कुछ खिलवाड़ के बातें भी और लोग करने लगे। पर ये एक अत्यंत सुंदर है सुनने वालों, जो कि भारत जा करके और 23 अगस्त 2023 पर और जा करके और अपना और कमाल दिखाए। हम राजेंद्र जी क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, या कुछ आप और अभी से कुछ और रखने वाले हैं?
0: हाँ, पहले हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, इसके बाद लोगों का उत्साह जो है बढ़ेगा और इसकी ओर अग्रसर होंगे। तो बात है चंद्रयान 3 की, यानी 2 चंद्रयान पहले भेज चुके हैं, जो आज बातचीत हमारी चंद्रयान 3 की रहेगी और 2 चंद्रयान के बारे में भी बात रहेगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में सॉफ्ट जानकारी लेंगे, इसके बाद डीप में जाएंगे। तो चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है उसके द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है। रोवर मतलब जो रोबोट होता है वो काम करता है
1: जी।
0: लेकिन इसमें आर्बिटर नहीं है। आर्बिटर जो मतलब वो दूसरे में भेजा था वो इसमें नहीं है, ऑलरेडी वहां पहले पहुंच चुका था, इसलिए इसमें वो नहीं लगाया। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, यानी जो चंद्रयान 2 था ये तीसरी कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंड में विफल हो गया था। जो पिछला वाला था वो पहुंच गया था, लेकिन जब वो नीचे उतरने वाला था उस समय वो गिर गया था। पिछले वाला अभी कुछ महीने पहले की बात है, पिछले साल की बात है, उसके अभी हम पूरी वो रखेंगे कि कब का क्या रहा
1: जी, जी,
0: उसकी डेट रहेगी। जो ये चंद्रयान है ये सॉफ्ट लैंड, वो पिछले वाला जो सॉफ्ट लैंडिंग का सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था, वो नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए चंद्रयान 3 छोड़ा गया। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन जो हमारे अंतरिक्ष केंद्र के सार हैं, वो श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर हुआ था। कब छोड़ा था ये? 14 जुलाई को छोड़ा था 2:35 पे। यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पे सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। यानी जो साउथ पोल पे है वो किसी और ने नहीं उतार पाया, अभी रसिया ने भी भेजा था उनका गिर गया पहले, और अमेरिका ने उसने चीन ने साउथ पोल पे भेजा सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, रसिया ने अभी कुछ दिन पहले भेजा था वो भी गिर गया। भारत पहला देश है जिसने अपना सफलतापूर्वक साउथ पोल पे उतार लिया, वो पहला देश साउथ पोल पे है और चंद्रमा पे जाने वाला चौथा देश है। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा हो जाए, इसके बाद इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी, पर गीत और यानी कि नगमा तो शांता जी ने और पिटारा से निकाल लिए हैं, पर राजेंद्र जी जैसे कि आपने कहा कि ये हमारे इंडिया भारत चौथा देश है, तो पहला 3 देशों कौन है?
0: अमेरिका है, ये रशिया है और चाइना है।
1: चाइना, अमेरिका, रशिया और चाइना के सिवा

0: हम भारतीय भी वहां पर और प्रवेश कर दिए। तो हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे राजेंद्र जी, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तेरी मिट्टी में मिल जाए,
1: ओ तेरी मिट्टी में गिर जाए, बहुत अच्छा।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम सुने और जो तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, एक फिल्म जिसमें अक्षय कुमार ने काम किए हैं, एक ऐसा देशभक्ति के अंतर्गत ये गीत को और लिखा। हमारे जो लेखक होते हैं ना, कितने सुंदर सुंदर संदेश रख देते हैं। पर राजेंद्र जी, बात ये है कि जो हमारा इसरो, तो इसरो जैसे हम क्या समझ सकते हैं, थोड़ा से उसके बारे में थोड़ा और हमें समझाइए।
1: इसरो जो है, जैसे एक हमारा जो है श्रीहरिकोटा में एक वैज्ञानिक, जो इसरो वैज्ञानिक, जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक है, वो एक जगह का नाम इसरो कि उसको बोलते हैं, और उस जगह में बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं जो नई नई खोज करते हैं,
0: और वो जा करके हमारे जो स्पेस, हमारे जो जा करके स्पेस के अंतर्गत और जानकारी वैज्ञानिक लोग खोजते रहते हैं। हम ऐसे समझ सकता है जिसे नासा है, ऐसा कुछ?
1: हाँ, जैसे नासा है वैसे ही इसरो भारत का है। नासा अमेरिका का है,
0: हाँ,
1: इसरो भारत का है।
0: अच्छा,
1: तो ठीक वही प्रकार से इसरो है, और उसी के अनुसार हम नई नई खोज करते हैं कि कैसे कब क्या। तो उसमें ये चीज जो देखने को मिली है, और अभी पूरा दुनिया सब लोग इसरो को सब जानते हैं, अब और अच्छे से जानने लग जाएंगे, क्योंकि जब कोई नई चीज का वो होता है तो इसके बाद सब लोग और भी बढ़िया से जान जाते हैं, उसी के बारे में बातचीत है। तो इतिहास की बात करते हैं इसके बारे में कि इसका इतिहास क्या रहा, कैसे रहा, जो हम बातचीत रख रहे हैं आज की, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्ग, यानी थर्ड जो है LBM-3 इसका नाम है, नामक लॉन्च वाहन पर, उसका नाम जो वाहन है इसका, उसका नाम है चंद्रमा 2 लॉन्च किया था पहले, और प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टच डाउन करना था। ये पिछली बात है इसकी। इससे पहले चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता, जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैपलिंग और चांद पर रात के समय सर्वाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावना थी। विक्रम लैंडर के बाद विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन यानी लुपैक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान 3 करने का प्रस्ताव दिया गया। मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक्ट एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर के समय में 2:35 पर लॉन्च किया गया। ये इसका इस इतिहास की बात चल रही है। हमारे बीच में अभी चारू जी जो कि राजस्थान से है जुड़ चुकी है, तो चारू जी अपना एंट्री डाल देंगे।
0: जी जरूर। सुनने वालों, हमारे जो अनाउंसर साथी चारू जी जो जा करके और भारत से और हम सब के साथ भी जुड़ चुके हैं, तो चारू जी आपको स्वागत है।
2: जी थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए। मैं भारत से राजस्थान स्टेट की जोधपुर जिले की हूँ, और मुझे पता चला कि आप लोग चंद्रयान के बारे में कुछ बात बता रहे हैं लोगों को। इतनी खुश हूँ, जब से ये हमारा सक्सेसफुल हुआ है तब से मैं एक बहुत ही प्राउड मोमेंट महसूस कर पा रही हूँ और इतनी खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे ख्याल से भारत में हर आदमी, हर व्यक्ति बहुत खुश है, उनको भी अपने इस चीज में एक योगदान लग रहा है और वो सोच रहे हैं कि हमने भी कुछ ना कुछ योगदान किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है और हम बहुत बहुत बहुत खुश हैं। और उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो आज हमसे देश से दूर रह के या किसी और देश में है और वो भी इस चीज को मिस कर रहे होंगे और इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे।
1: चारू जी बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं और प्रोग्राम में अभी चारू जी बहुत सारी जगह गई थी, इस विषय में बाद में बातचीत करेंगे कहाँ कहाँ गई थी कुछ कार्यक्रम में। और उससे पहले हम थोड़ा सा चारू जी को कहेंगे कि क्यों ना एक आप तैयारी कर लेंगे थोड़ी देर में चंद्रयान के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा अपनी तरफ से कोई आपका जो अच्छा सा नगमा है उसको सुनाएंगी। उससे पहले हम जो हाँ आप तैयारी कर लेंगे और उससे पहले हम जो चंद्रयान का उद्देश्य है उसके बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि 128 देश एकदम टकटकी लगा के आज हमारा रेडियो प्रोग्राम जो सुन रहे हैं वो यही सुन जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। और हम तो इसको इसमें बहुत कुछ है लेकिन हम इसमें सॉफ्ट तरीके से मतलब छोटा छोटा पूरी जानकारी लेके हर प्रकार की जानकारी इसमें संभव करा रहे हैं कि सारी चीज ये कब हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी जो पहले वाले चंद्रयान है इसमें दल कौन कौन से हैं, क्या क्या है, इस सब चीज की जानकारी दे रहे हैं। तो हमारा अब इसका नंबर है उद्देश्य का। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिनमें शामिल है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना और इसके बाद जो है परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष सिवन ने कहा है कि अनुमानित लागत इसमें 615 करोड़ रुपए का यानी 89.79 मिलियन इसमें इतना पैसा खर्चा हुआ है। तो इसमें जो खर्चा हुआ है बहुत ज्यादा खर्चा होता है और इसका दल है जो कौन कौन से दल है, इसरो अध्यक्ष सोमनाथ जी हैं, मिशन निर्देशक मोहन कुमार जी हैं, सहायक मिशन निर्देशक जी नारायण जी हैं, परियोजना निर्देशक वीर मुथवेल हैं और जो उप परियोजना निर्देशक है वो कल्पना के जी हैं, वाहन निर्देशक बीजू सी थॉमस हैं। ये 6 लोग इसके मुख्य जो थे इसके दल के, इन लोगों की देखरेख में जो मुख्य लोगों के थे इनके हुआ। तो क्यों ना संजय जी एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और फिर आगे की बातचीत रखते हैं।
0: राजेंद्र जी वो नगमा क्यों ना हम चला देते हैं, जो हम बच्चे थे तो इस गीत को हम लोग हरदम सुनते थे कि चंदा मामा दूर से,
1: और जो हमारा कार्यक्रम है वो भी चंदा मामा के है तो बहुत ही अच्छा है।
0: तो अब चला देते हैं चंदा मामा के ओर।
1: जी जी जी

0: जैसे कि अभी चंदा मामा का सब लोग ने गाना सुना और चारू जी एक गाना तैयारी करेंगे जब हमारा थोड़ी देर में ये होगा, इसके बाद चारू जी का एक गाना रहेगा। तो जो अभी जानकारी है बबली जी, क्योंकि बबली जी महिला है हमारे प्रोग्राम में और दो महिलाएं और भी शांता जी और चारू जी, तो बबली जी क्यों ना आप कुछ जानकारी दें।
1: हाँ जी जरूर मास्टर जी, जिन महिलाओं ने सहयोग दिया है चंद्रयान के लिए उनके नाम है नंदनी, मोमिता, रितु, अनुराधा, मिनिहाल, वीआर।
2: तो ये राजेंद्र जी ये महिलाओं है, क्योंकि अनुराधा जी जो तो इसरो का डायरेक्टर भी हो चुके हैं ना।
0: हाँ
2: तो सुनने वालों ये बात है कि भारत में ना सिर्फ पुरुषों पर, भारत में देखो कितने ये खास करके और स्पेस के अंतर्गत में महिलाओं भी कितना और जानकारी, कितना वैज्ञानिक का और पढ़ाई किए है और बड़े बड़े और पदवी पे और जा करके सभी के और इतना मेहनत करने से और जा करके जो मान जो चंद्रमा कहते हैं वहाँ पर और साउथ पोल पे जा करके लैंड कर पाए। राजेंद्र जी संदेशों में संदेश और क्या है?
0: संदेशों में संदेश है वित्त पोषण का। दिसंबर 2019 में यह बताया गया कि इसरो ने परियोजना की पारंपरिक फंडिंग के लिए 75 करोड़ यानी यूएस डॉलर के अनुसार 10.95 मिलियन का अनुरोध किया था, जिसमें से 60 करोड़ यूएस डॉलर 8.76 मिलियन जो होता है मशीनरी जो होती है उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए होगा, जबकि शेष 15 करोड़ 2.19 मिलियन राजस्व दे मदद में मांगा गया है। इसमें जो खर्चा की बात चल रही है इतना इसमें खर्चा भी होता है, और कक्षा की ऊंचाई बढ़ाना एवं विशेषण रखरखाव में जो उपग्रह है उसमें LMW है, M4 रॉकेट की 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पे भारतीय मानक के समय 170 किलोमीटर 106 मील की EPO उपहु पेरिजो और 36.500 किलोमीटर यानी 22.680 मील का अपहु पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑन बोर्ड LM लिक्विड OPG मोटर और रासायनिक थ्रस्टर का उपयोग करके उपग्रह को ट्रांसलूजर इंजेक्शन कक्षा में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया, ऐसा इसको लॉन्च किया गया। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर रोवर के विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन जो इसमें बता रहे थे हम कि इसकी तीन प्रकार की जो वो है वो क्या क्या है, तो वही है जो इसकी क्षमता बढ़ेगी और अवलोकन का प्रदर्शन होगा, चंद्रमा की संरचना यानी जो बेहतर ढंग से समझाने और समझने के लिए उनके विज्ञान को अवश्य अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व मिट्टी पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, वहां पे भी खोजा जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग जैसे धरती में सब चीज है वहां पे क्या है नहीं है किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बात है। और अब बात करते हैं बनावट की, ये कैसे बना हुआ है। चंद्रमा तीन प्रमुख हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल पर मौजूद स्पेक्ट्रो पोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसकी शेप जो है इस प्रकार की है। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शनल मॉड्यूल लैंडर और रोवर ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा में पृथ्वी के वर्गकर्मीय स्पेक्ट्रल और पोलोरामेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री और हैबिटेबल प्लैनेट यानी अर्थ सेफ, इसकी सेफ जो होती है उस नामक का पेलोन में भी ले जा रहा है। तो बहुत सारे लोग तो इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है, तो केवल ये समझे कि इस कैसा बना है, इसको जो ऊपर ढकेलता है सरनामी में बोले तो, और जो वहाँ जब ग्रेविटी सिस्टम से ऊपर चले जाता है तो फिर चंद्र की, चंद्रमा का जो सिस्टम है उसके अनुरूप वहाँ कैसे उसको ले जाया जाता है, तो इस प्रकार की बातचीत है।
2: तो राजेंद्र जी, भारत में जो कुछ बने और उसके लिए गाना नहीं बनाया जाए तो वो भी कमताए रह जाते हैं ना।
0: हाँ,
2: तो क्यों ना हम एक
0: ताजा पढ़ते हैं। चारू जी कुछ कहना चाह रही है।
2: चारू जी पहले आप।
3: मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने गाना एक पूछा है, वो मैं गाना आपको बताना चाहूंगी।
2: चारू जी, आपको दुनिया में हर एक देशों में लोग इस समय सुन रहे हैं।
3: मेरी आवाज आ रही है राजेंद्र जी?
0: आ रही है, आ रही है।
2: आप अपने आवाज सुना सकते हैं?
3: जी जी जी जी, मैंने ये गाना अभी जब से ये चंद्रयान का ये हुआ है तब से मैं गाना बहुत सुन रही हूँ। ये हमारे भारत के लिए बहुत ही कामयाबी वाला गाना है और ये मिशन मंगल का गाना है, शाबाशिया। तो मैं गाना चाहूंगी कि

और पूरा दुनिया ने देखा उसका लैंडिंग, और सब लाइव था कि कैसा लैंडिंग हो रहा, कितना बजे हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये सब लोगों ने बड़ा ही बढ़िया ढंग से उसमें देखा। और मोदी जी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो साउथ अफ्रीका में, वो कह रहे थे कि मैंने उनका सुना लाइव, वो कह रहे थे मैं हूँ साउथ अफ्रीका में, लेकिन नजर उनकी चंद्रमा पे ही थी कि हमारा जो प्रशिक्षण, हमारा जो वो है चंद्रमा यान है, वो कैसे लैंड हो रहा, कैसे क्या हो रहा। तो मोदी जी वहीं से एकदम वो कर रहे थे, तो बात चल रही थी चंद्रयान की, और क्यों ना हम अपने जो कॉमर्शियल है और खबर है उसकी ओर बढ़े।

हाँ, जो अभी बातचीत चल रही थी चंद्रयान की, और हम चाह रहे हैं कि चंद्रयान जो टू, उसके बाद में थोड़ा लैंडर के बाद में बात करेंगे, और इसके बाद बबली जी कुछ 10 बातें जो चंद्रमा के बारे में है, चंद्रयान के बारे में वो भी बताएंगी। तो पहले मैं एक इसके बारे में बात करता हूँ, फिर बबली जी रखेंगे। चंद्रयान दो के विक्रम के विपरीत, मतलब जो चंद्रयान सेकेंड उसके विपरीत है, जिसमें 5-800 न्यूटन इंजन थे, और पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान तीन के लैंडर में केवल 4 थॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान तीन लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर एडीबी से लैस होगा। चंद्रमा दो की तुलना में इंपैक्ट लैक्स को मजबूत बनाया गया है, और उपकरण जो है, उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए 1 से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिट एमसा पेरेमेट चेस्ट लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेंसिंग एक्टिविटी व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंड मोडर प्रोब रंभा एलपी नामक भारतीय पेलोड शामिल है। इसमें अतिरिक्त नासा ने एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरा को चंद्र लेजर रिलीज अध्ययनों के लिए

0: इसमें समायोजित किया गया है। यानी कुल मिला के इसका मतलब ये है कि ये किस प्रकार का बना है, कितनी क्षमता है, कितना क्या है, इसके बारे में ये बातचीत थी। तो बबली जी, आप बता रहे थे कि जो 10 जानकारियां हैं आपके पास, प्रिया जानकारी उनको बता दीजिए।
1: हाँ जी, जरूर मास्टर जी। चंद्रयान 3 के बारे में 10 बातें। नंबर 1, चंद्रयान 3 मिशन में 615 करोड़ की लागत आई है। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में 978 करोड़ रुपए की लागत आई थी। नंबर 2, रोवर प्रज्ञान सहित 1749.86 किलोग्राम वजन वाले विक्रम लैंडर की मिशन लाइफ 1 चंद्र दिवस है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। नंबर 3, चंद्रयान सहित चंद्रमा की मिट्टी के नज़दीक सतह प्लाज्मा आयन और इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग वाली जगह के आसपास भूख पीता को भी मापेगा। यह मिशन यह पता लगाने में मदद करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी पर किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। एएन अल्फा पार्टिकल, एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर लैंडिंग की जगह के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी एलिमेंटल कंपोजिशन देखेगा। नंबर 4, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई है। नंबर 5, चीन के साथ भारत चंद्रमा पर ऑपरेटिंग रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया है।

नंबर 6, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले चीन, अमेरिका और सोवियत संघ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। नंबर 7, इस मिशन में जिन कंपनियों का हाथ रहा है उसमें लॉर्सन एंड ट्यूबर, मिश डेट निगम, बेहर, गोदरेज, एंटिक एस्पर इंटरेस्ट शामिल हैं।

नंबर 8 चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने जनवरी 2022 में प्रोजेक्ट की कल्पना की और इसे पूरा करने में उनके साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी वीर मुथुवेल उन्नी कृष्ण नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक यू आर राव सैटेलाइट सेंटर यू आर एस सी सी के निदेशक एम शंकरन रहे।

0: नंबर 9। भारत ने पहली बार साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए यह पता लगाया था कि चंद्रमा के उस क्षेत्र में जहां अंधेरा रहता है वहां जमा हुआ पानी। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था जिसे 22 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अब वो काम पूरा करेगा जिसे चंद्रयान 1 ने अधूरा छोड़ दिया था। नंबर 10। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 25 अगस्त को लैंड करने वाला था लेकिन वो समय से पहले पहुंच गया और सफल लैंडिंग की।
1: तो राजेंद्र जी बबली ने अपना 10 संदेश और रखे और जा कर के सुनने वालों, और यहाँ जबकि चंद्रयान जो एक ऐसा यानी कि स्पेस में जाने वाला है और वाहन है जो जा कर के वहाँ से और जा कर के साउथ पोल जो और यानी मान जो हम कहते हैं वहाँ पर जा कर के लैंड किया। पर राजेंद्र जी चंद्रयान जी से इस नाम क्यों रखा गया?
2: क्योंकि जो चंद्र है मून है उसको हमारे हिंदी में चंद्र बोलते चंद्रमा बोलते हैं और यान यानी उसका जो यान का मतलब होता वाहन यानी जो जिसको हम गाड़ी बोलते हैं। तो जो उस इस धरती से उस जगह पे पहुंच जाए यान यानी एक चीज जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए उसको यान बोलते हैं और जाना कहाँ उसको चंद्रमा पे, इसलिए उसको चंद्रयान बोला गया है। ये इसकी विषय वो है डेफिनेशन है।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना हम वही गाना जो शांता जी अपने पिटारा से निकाल कर रख रहा है कि आओ तुम्हें चांद पे और घुमाने और शेयर करने को ले जाते हैं।
2: वाह ये तो बहुत ही सुंदर सा नगमा है और इसको तो इस स्थिति में रखना ही चाहिए जरूर।

0: जो आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊं, ये गाना सूरीनाम में गाया गया, सूरीनाम में ये गाना गाया गया था संजय जी।
1: नहीं नहीं, ये तो वैसे वैसे तो ये बॉलीवुड के गाना है और पुराना फिल्मी गाना है, पर फिर भी कुछ फिल्मी गाने को हम लोगों ने कोशिश करते अपने कलाकारों से और उसे फिर और अपने आवाज में गाया जाता है, पर ऐसा हाँ, और धुन भी थोड़ा से और ढोल बदल दिया जाता ना। हेल मोई हो जाता अभी, ऐसा नहीं कि भारत वाला ठीक नहीं, पर थोड़ा से हमारे यंग जो टैलेंट होते हैं कोशिश किया जाता है और उनका गीत भी चलाने को। राजेंद्र जी, चंद्रयान उस अंतर्गत में
0: जो बात कर रहे थे कि इसमें एक रोवर लगा हुआ है, रोवर तो सब लोग जानते ही हैं कि रोवर मनुष्य जैसा एक व्यक्ति जैसा होता है और उसको कुछ मशीनों के द्वारा काम दिया जाता है और वो काम जैसे दिया जाता वैसे करता। जैसे ही आपको पता होगा कि जब चंद्रयान अपनी जगह पे पहुंच गया तो रोवर वहां से बाहर निकला और उसने भारत का झंडा जो है वो झंडा वहां गाड़ दिया और जो उसके पैर थे उस पैर के नीचे जो भारत की मोहर है उसका निशान एकदम वहां छप गया। और वो निशान ऐसा था कि वो निशान क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और हवा ये सब चीज नहीं है तो वैसे का वैसा वो रहेगा निशान, वो हटेगा नहीं। तो ये रोवर का काम
1: ऐसा
0: प्रज्ञान यानी रोवर पर मौजूद अल्फा, रोवर पर मौजूद लेजर और पार्टिकल एक्सरे, इंडिस्ट्यूट ब्रेकडाउन, स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोस्कोप, ये रोवर पे है। प्रज्ञान 6 पहिया वाला लगभग 26 किलोग्राम वजनी का एक रोवर है, एक रोवर जिसमें 6 पहिए हैं जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। जहाँ पे यान है उसके 500 मीटर के अगल बगल वो काम कर सकता है और प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से युक्त है। इसमें क्या क्या चीजें लगी है रोबोट में, ये सब चीजें हैं। तो रोबोट जो है उसमें सारा काम कर लेता है और आपने देखा ही होगा कि रोबोट ने सबसे पहले क्या किया, उतर गया, अलग हो गया और उसमें सबसे पहले उसने भारत का झंडा गाड़ दिया। तो बहुत ही अच्छे ढंग से रोबोट एक काम करता है। अब इसकी बात करते हैं, चंद्रयान 3 एकीकृत मॉड्यूल कैप्सूल में भरे जाने से ठीक पहले मिशन चंद्रयान लैंडर तथा रोवर इसमें क्या क्या रखा था, एक लैंडर था जो उसको उतारेगा और एक रोवर था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसको लॉन्च किया और जो वेबसाइट है इसकी आप लोग जो लोग देखना चाहते हैं वेबसाइट में पूर्ण रूप से https://www.isro.gov.in और चंद्रयान 3 न्यू HTML इसके माध्यम से भी, चंद्रयान के बारे में जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी उसको पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और इसका मिशन है विक्रम लैंडर 15 दिन में इसका मिशन था और प्रज्ञान रोवर भी 15 दिन में। अंतरिक्ष यान के गुण, इसके गुण क्या है, चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसका निर्माता है। पेलोड प्रोफेशनल मॉड्यूल्स 2148 किलोग्राम टोटल इसका पेलोड जो था 2148 किलोग्राम, लैंडर मॉड्यूल का 26 किलोग्राम, प्रज्ञान रोवर सहित 1752 किलोग्राम, कुल वजन इसका 3900 किलोग्राम था यानी 4000 में से 100 किलो कम। और जो ऊर्जा है इसकी बिजली है, प्रोपल्शन मॉड्यूल 758 वोल्ट का इसमें बिजली है और जो लैंडर मॉड्यूल है वो 738 वोल्ट का है और जो रोवर है वो 50 वोल्ट का है। तो हमारे मामा जी जो है वो रेडियो के माध्यम से ये सब चीज सुन रहे हैं और उनको भी जाना चाहिए चंद्रमा में पूजा करने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारा पूजा पाठ चंद्रमा के लिए हुआ है और उसी से भारत देश के जो लोग हैं वो चंद्रमा को चंदा मामा यानी रिश्तेदार अपना पहले ही समझे हैं और जितनी पूजा पाठ जब लोग करते हैं तो उसकी उन्होंने डायरेक्ट अपने जो अपनी धरती पे चंद्रमा ने आराम से उसको उतरने की परमिशन दे दी।
1: तो राजेंद्र जी, मामा जी ने तो कुछ और संदेश कर रहा है, यहाँ से क्यों ना हम वो संदेश रख देते हैं।
0: हाँ जरूर जरूर।
1: और शांता जो पिटारा भर भर के यहाँ पहुंच जाते हैं सीढ़ियों में, तो अब सुन लेते हैं मामा जी क्या कहते हैं।
2: ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी
2: और नहीं तो क्या, यहाँ देखो हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो
3: जी,
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माई डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। India's contribution is 0, 0 and 0.

0: प्रीत यहाँ की रीत सदा, ये सुंदर सा गीत हम सब सुनने को प्राप्त हुआ। राजेंद्र जी, आप इस गीत के बारे में कुछ कहना चाहते हो?
1: गीत के बारे में जो बोल थे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, यानी प्रीत मतलब प्रेम और रीत मतलब सिस्टम। जिस देश का प्रेम के प्रति ही सिस्टम है, वहाँ के मैं गीत गाता हूँ, ऐसे देश के मैं गीत यानी गाना सॉन्ग गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, यानी भारत मानी इंडिया, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहीं की बात बताता हूँ। तो जो जिस देश का व्यक्ति रहने वाला है उस देश का बात बताता है, लेकिन हमारे जो मामा जी हैं वो रहने वाले तो हैं सूरीनाम के, लेकिन बात बताते हैं नीदरलैंड्स की, और वो एक नहीं वो बहुत सारे देश गए, वहाँ की भी बात बताते हैं। तो हमारे जो मामा जी हैं वो रेडियो को सुन रहे हैं, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो बड़े ही सावधानी पूर्वक सुनते हैं और बाद में हमें बताते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, तो हमारे कार्यक्रम को थोड़ा ठीक भी कर देते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग चंद्रयान की, चंद्रयान तीन, इसमें कन्फ्यूजन क्या है, कुछ लोग कन्फ्यूज है। चांद पर चंद्रयान तीन जितनी बड़ी उपलब्धि, लोगों में उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन है। जान ले हर सवाल का जवाब, जिसका जो सवाल उसका जवाब। चंद्रमा पर चंद्रयान तीन की लैंडिंग को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, ये काम करने वाला भारत कौन सा देश बना, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पहला बना कि चौथा बना, इनके सब कंफ्यूजन दूर होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर उतरा या उसके पास उतरा, पानी खोजेगा या नहीं खोजेगा, क्या काम करेगा, कितने दिन जिंदा रहेगा, इससे देश, वैज्ञानिकों, इसरो और आम लोगों को क्या फायदा होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं इस रेडियो के माध्यम से। तो बात करते हैं चंद्रयान तीन के जरिए चांद पर उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना भारत। एकदम स्पष्ट है कि भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना है। यानी जो तीन देश और उतरे हैं वो तो उतरे इस तरफ, ये पार, सरनामे में बोले तो ये पार, और जो भारत उतरा है वो उतरा वो पार, दक्षिणी ध्रुव उसको बोलते हैं। इससे पहले अमेरिका ने 11 सॉफ्ट लैंडिंग की, उसका सर्वेयर 7 यान दक्षिणी ध्रुव के थोड़ा करीब गया था, मतलब थोड़ा नजदीक गया था, लेकिन इतना नजदीक नहीं गया जितना भारत का गया, लेकिन ज्यादातर चांद की भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य यानी बीचों बीच, और दो उत्तरी गोलार्ध में की तरफ थे। ज्यादातर जो अमेरिका के यान थे वो भूमध्य रेखा के बीच में, यानी चांद के बीच में, और दो उत्तरी गोलार्ध, मतलब थोड़ा उस तरफ थे लेकिन पूरा नहीं। रूस सोवियत संघ ने 8 सॉफ्ट लैंडिंग की है, सभी भूमध्य रेखा के आसपास या फिर उत्तरी गोलार्ध के करीब थे। उसने 8, रशिया ने 8 चांद की लैंडिंग कराई चंद्रमा में, और उसके जो थे वो सारे इस तरफ ही थे, थोड़ा नजदीक थे उसके लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थे। चीन के 3 प्रोजेक्ट चांद पर गए, चांगई 3 और 5 चांद के उत्तरी ध्रुव के आसपास था, जबकि चांगई 4 का पिछले इलाके फार साइड की तरफ गया था। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। तो दक्षिण ध्रुव जो है उस तरफ है, वो भारत पहला देश है उसने सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण ध्रुव की तरफ कराई है। तो सब लोगों को अपना जवाब मिल ही गया होगा कि क्या क्या कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए। अब बात है कि कितना दिन तक काम करेगा चंद्रयान तीन। चंद्रयान तीन का लैंडर यानी विक्रम और रोवर यानी प्रज्ञान चांद पर 14 या 15 दिन काम करेंगे। ये दिन धरती के हिसाब से हैं, हमारी जो धरती है उसके हिसाब से 14-15 दिन है, क्योंकि अभी बबली जी ने जानकारी दी है कि 14 दिन के बराबर एक दिन होता है चंद्रमा का एक दिन और हमारा 14 दिन, क्योंकि अगले 14-15 दिनों तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, जब तक चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी, जैसे ही चांद के उस हिस्से सूरज की रोशनी हटेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर बंद हो जाएंगे। दोबारा रोशनी पड़ने पर फिर से काम कर सकते हैं, यानी 14-15 दिन जो रोशनी पड़ेगी तब तक तो काम करेगा, लेकिन जैसे ही रोशनी नहीं पड़ेगी, रोशनी हट जाएगी, वहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा और उस ठंड के कारण हो सकता है वो काम करना बंद करें। लेकिन जब फिर से रोशनी पड़ेगी तो कहते हैं कि हो सकता है दोबारा से काम करें। इस बारे में लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं कि चंद्रमा, यानी जो हमारा साउथ पोल में चंद्रमा का चंद्रयान है, वो सब लोगों ने देखा किस प्रकार से गया, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हुई, हर प्रकार से लोगों ने देखा। तो संजय जी, आपने भी देखा था क्या जैसे लैंडिंग हो रही थी?
0: जी जी, मैं भी बड़ा और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जब लैंडिंग का समय जब आया तो 1 किलोमीटर और उससे धीरे धीरे गणित होने लगा कि अब 800 मीटर बाकी है और ऐसे 200 मीटर बाकी है, और धीरे धीरे जब एकदम करीब आ गया तो इतना, और यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि बड़ा बेचैनी से सभी लोग और उसका इंतज़ार कर रहा था, और इतना अच्छा लगा उसे और फॉलो करने को। और राजेंद्र जी, ये पूरा वृतांत है जो कि वो यूट्यूब पे हम देख सकते हैं, चंद्रयान 3 का लैंडिंग जो पूरा यूट्यूब के माध्यम से लोग देख सकते हैं ना?
1: हाँ, देख सकते हैं। और जो भारतीय समय के अनुसार जो उतरा है ना, वो 6:04 पे, और जो नीदरलैंड्स का जो समय है, यूरोप का समय है, 3.5 घंटा पीछे कर लो।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और शांता जी भी नीदरलैंड्स में कुछ तैयार करके रखे हुए हैं, तो नीदरलैंड्स में भी कुछ सुनाएंगे।
1: हाँ, जरूर।
0: पहले में गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: राजेंद्र जी, ये चंद्रयान के बारे में और चंद्रयान के अंतर्गत कितने सारे नए नए और गीत जो बना दिए भारत ने, तो और संदेश क्या है राजेंद्र जी?
1: जो संदेश है वो सभी जानते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन के कुछ समय बाद यानी शुरू किया गया लूना 25 मिशन जो रूस के द्वारा शुरू किया गया था, वह तकनीक खामियों के चलते असफल हो गया। इसी बीच जब हम लोग भारत के लोग चंद्रयान 3 छोड़ा तो रूस ने भी एक फटाफट जल्दी से बनाया और रूस चाहता था कि हम लोग रूस का नाम पहले आए कि उन्होंने साउथ पोल पे अपना चंद्रयान पहुंचा दिया, लेकिन लूना जो था वो असफल हो गया और आखिर रास्ते में गिर गया, असफल नहीं हो पाया। तो भारत का जो चंद्रयान 2 था वो भी असफल हो गया था पिछली बार। इसके लिए हर बार भारतवासी ने यही शुभकामना करी कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हो और सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रमा की सतह पर भारत का परचम लहराए।
0: राजेंद्र जी, बात
1: क्या कह रहा था इस बारे में, जो हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। तो हमारे जो मामा जी भी बता रहे थे और लोग भी ज्योतिष जो बता रहा था उसके अनुसार देखते हैं कि ज्योतिष क्या कह रहा था, यानी पहले जब शुरुआत हुई थी, अभी तो सब कुछ हो गया, सबको पता लग गया। तो ज्योतिष के अनुसार देखे तो स्पष्ट रूप से एक बात कही जा सकती है कि चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर उतरने में कुछ परेशानियां सामने आने वाली है यानी आने वाली थी, और यह मिशन अत्यंत जटिल और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरने वाला था। विशेष रूप से लैंडिंग से पूर्व का समय बहुत ज्यादा परेशानी जनक था, लेकिन सूर्य और बुध का जो बुद्धादित्व योग है वह भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी सूझबूझ, कर्मठता और कार्यकुशलता की बदौलत इस कठिन समय में भी एक चुनौती के रूप में इस स्थिति को संभालते हुए चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने में सफल रहा। वैसे भी प्रत्येक भारतीयवासी यही चाहता था। अब ग्रह की बात करते हैं, ज्योतिष की बात, इसके बाद ग्रह की। ग्रह 4 ग्रह निभा सकते विशेष भूमिका, यानी शाम को 6:04 पर ग्रहों की स्थिति देखें। जो कल 6:04 की स्थिति है ग्रहों की, उसको देखें तो चंद्रमा केतु के साथ और बृहस्पति राहु के साथ विराजमान होकर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे थे। मकर लग्न का यह समय होने की संभावना है जिस पर नैसर्गिक रूप से शुभ और योग कारक ग्रह शुक्र की पूर्ण दृष्टि थी। शनि अपनी राशि में मजबूत था और अष्टम भाव में बुध और सूर्य विराजमान थे तथा मंगल महाराज चतुर्देश और एकादश होकर नवम भाव में विराजमान था और वहां से द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे थे। ग्रहों की यह स्थिति कुछ जटिल तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा अवश्य कर रही थी, लेकिन समस्याओं से निकलने में ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही थी। नवम भाव के मंगल, सप्तम भाव के शुक्र और बुध और सूर्य के बुद्धादित्य योग के कारण भारत इन कठिन चुनौती पूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। हम सभी को इसी की दुआ करनी चाहिए थी और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही चंद्रयान, ऐसा लोग कह रहे थे कि सब लोग यही आशा कर रहे थे कि चंद्रयान शीघ्र ही अपनी सतह पर सफलता पूर्वक उतर जाएगा। ग्रहों की दृष्टि भी थोड़ा सा इधर उधर थी, लेकिन जो सफलता मिली है वो बहुत ही जो ग्रहों की और ज्योतिष के कारण और उनमें जो थोड़ा सा वो था उस पूजा पाठ के कारण सब एकदम सेट हो गया। तो हमारे मामा जी ने भी उसमें बड़ी पूजा पाठ करी और वो सब जानते हैं ग्रहों के बारे में। तो अब जो चांद पे सबसे पहले क्या हुआ कि रोबोट बाहर निकला, उसने झंडा लहराया और फिर एक फोटो भेजा। अभी तक चांद पे बहुत सारे चक्कर लगा चुका है और एक्टिव है, और जो चांद पे जो खोज है वो शुरू हो चुकी है। अब महाप्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं, खोज चल रही है और वहां से सीधा फोटो अपने इसरो में आ रही है और उसकी खोज जो है चलती जा रही है, आगे बढ़ रही है। संजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे?
0: बस ये जरूर कहना चाहता हूँ राजेंद्र जी कि देखिए अब 1900 यानी नेखन शस्तक में ये पहला बार चांद पे और इंसान यानी कि प्रवेश हुआ और आज कुछ 50 और 4 यानी 54 साल बाद फिर भारत जो जा कर के और चांद पे और अपना झंडा को लहराया है ना।
1: हाँ जी,
0: तो इस बात के लिए यानी 1 + 70 नेखन शस्तक में पहला बार जो जा कर के नासा वाला और अभी उसके बाद में और रूस और चीन ने जो अपना और संदेश वहाँ रखे और अब जा कर के ऐसा हुआ कि हम लोग का भारतीय और झंडा वहाँ लहर रहे हैं। और कौन सा संदेश है राजेंद्र जी, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो चुके हैं डच में कुछ हम सबको सुनाने के लिए।
1: थोड़ा सा हम जो और संदेश रखना चाह रहे हैं वो यही रखना चाह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझने वाले बात है। चंद्रयान 3 जिसका संस्कृत में अर्थ है चंद्रयान, और इसका जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरने का ऐतिहासिक मिशन है वो हो चुका है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लगभग 54 महिला इंजीनियर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीधा चंद्रयान 3 मिशन में काम किया। 54 महिलाएं भी थी जिन्होंने काम किया है वहां पे। और चंद्रयान 1 का नाम क्या था, जो चंद्रयान पहला था, चंद्रयान का नाम पहले चंद्रयान नहीं बल्कि सोमयान था जो पहली बार छोड़ा था वाजपेयी जी के समय में 1999 में अटल सरकार के कार्यकाल में इसका नया नामकरण किया गया था। नाम बदलने के पीछे की वजह क्या थी वह जानते हैं। यह साल 1999 तब केंद्र सरकार वाजपेयी जी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सभी लोग जानते हैं। और इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय वह धरती की चारों तरफ 233 × 71.3.51 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था। जब धरती का अवट छोटेगा चंद्रयान, तो वैज्ञानिक उसमें कुछ और बताएंगे। तो इस प्रकार से जो और जानकारी थी वो सब लोगों को तक पहुंची। और चंद्रमा 3 चंद्रमा के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, बधाई सब लोगों ने दी। और इसकी 164 किलोमीटर गुणा 18,074 किलोमीटर हासिल की गई है। जो चंद्रमा के कक्षा में स्थापित हो गया जैसा कि इरादा था तो वो भी पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार से सारी जानकारी सब लोगों को मिली। और इसमें से जो 4 देश हैं वो सबने सबको पता चली गया कि अमेरिका है, सोवियत संघ है, सोवियत संघ यानी रूस और चाइना है और भारत है। तो 4 ही देश अभी तक चांद पे जा पाए हैं। तो अभी बहुत सारी चीज ढूंढनी वहाँ पे कि पानी है, वायु है, मिट्टी है, कैसा है, क्या है। अगर वहाँ पे ये सब चीज मिल गया तो जीप भी वहाँ पे जा सकते हैं और अनेक प्रकार का वहाँ पे हो सकता है। तो अभी शुरुआत हो गई है चांद पे जाने की, तो बहुत देखते हैं आगे क्या होता है। और जो चंद्रमा जो यान है वो कितना दिन वहाँ पे रह सकता है, 14-15 दिन और या ज्यादा। तो शांता जी आप कुछ नेदरलैंड्स में बताने वाले थे, और क्योंकि जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते हैं, इंग्लिश एंगल्स नहीं समझ सकते हैं, वो लोग डच के माध्यम से समझ सकते हैं। तो क्यों ना शांता जी के माध्यम से डच में थोड़ा सा जानकारी ले ली जाए। संजय जी
0: बिल्कुल

यानी नैनो रूप में, नैनो मतलब हजार जो गुना, एक गुना हजार गुना को हम एक उसमें करके उनको पहुंचाएं, यानी समय कम लगे लेकिन जानकारी पूर्ण हो, यही हमारा उद्देश्य रहता है। अब फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को और हमारे मामा जी को भी।

पैसा एक ही भाषा बोलता है, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुझे बचा लूंगा। सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। फिर

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए और शांता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी और चारू जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। नमस्कार।

पावर हिल स्टाइल रेडियो पर आप चुन है दोस्तों, और मिस्टर सानू, टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू, नेकजी सीफ ने तक तक में शुरुआत किया है गीत गाने को, और ये लगभग 1,000 से ज़्यादा गाना ये गाया है, और इसका एक न्यू सॉन्ग है यार तुई जैसन फिरन त्वेंतक में ये सॉन्ग गाया है, और लगभग ये गीत 1 महीना पुराना है। तो एक डुएट है मिस कुमार सानू और साथ ही साथ सर भरीस, दोनों के साथ ये गीत, दोनों के आवाज़ों में, दोनों की मीठी आवाज़ों में आप ये गीत सुनेंगे, मिस्टर सानू एंड सर भरीस।

मैं तुम्हें देते एक और रोमांटिक हॉट सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ, मिस्टर सानू और साधना सरगम दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे। कुमार सानू दोस्तों एक सांगर एक कलाकार है जो 5 साल लगातार अवार्ड पाया, तो ये जैसन नीखंतक से लेकर फेफर नीखंत लोग 5 साल लगातार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और बात यह है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी है, इसलिए कि एक रोज एक दिन के अंदर बिने इन डाक कुमार सानू ने 28 गीत, जी हाँ दोस्तों 28 गीत गाया और रिकॉर्ड किया बिने इन डाक दोस्तों। ये एक रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है इसी कारण। मिस्टर सानू एंड साधना सरगम।

कुमार सानू एंड साधना सरगम, आज आप चांदनी हो और तू मेरे साथ हो। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण। उदित नारायण ने लगभग 67 तक दर्जन गाना गाया है दोस्तों, और 36 तक भाषा ताल में। आप जानते हैं इंडिया में लगभग 415 ताल है, भाषा है। तो उदित नारायण ने 67 तक 36 भाषा में अपन गीत पेश किया है, और सब गीत में से एक गीत है, ये एक नया सॉन्ग है, एक दो महीना पुरानी है दोस्तों, और गाना के बोल है इंडिया से आया हो। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में।

नारायण दोस्तों, और उदित नारायण के साथ साथ ये द्वैत आपने सुना। और दोस्तों, मित्रा जी, दालिया मित्रा जी ने उदित नारायण के साथ ये द्वैत पेश किया आप सभी के लिए। उदित नारायण ने ही तक में शुरुआत किया गाना गाने के, और लगभग 14 ऑन द स्काई देंगे उदित नारायण के मिला। एक नया सॉन्ग और मैं चॉइस करके रखा उदित नारायण का। मैं सोचता हूँ कि ये गीत फिल्मों में अभी नहीं आया या फिल्मों में नहीं आएगा। मिस्टर उदित नारायण या पद्मश्री उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे।

आज के लिए माफी, कल तो छोड़ दूंगा, कल जब आएगा तो देखा जाएगा दोस्तों, कल आएगा तो देखा जाएगा। मिस्टर सानू, पद्मश्री मिस्टर सानू को, नहीं उदित नारायण होना चाहिए। माफी किए दोस्तों, आप सभी से माफी चाहता हूँ। उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण के आवाज में एक और सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ा वक्त और।

उदित नारायण के बाद में भी आप गीत को सुने। श्रिया घोषाल, श्रिया घोषाल कैतरा के गीत भी गाया है दोस्तों। और श्रिया घोषाल जब 6 साल के था तभी से ये म्यूजिक में, म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और आज तलुक के म्यूजिक की दुनिया में है। शुरुआत किया अपन सॉन्ग से तुई दर्शन तुई में, और कई तरह से इन्हें लोग अजमायर किए, एक गायकी निकलेंगे। फिर भी जाकर सारेगामा पा का प्रोग्राम में इन्हें लोग टेस्ट किया और पता लगा कि ये प्लेबैक सिंगर का काबिल है। तो श्रिया घोषाल और साथ ही साथ शकील फर्नांडस दोनों की आवाज़ में आप एक गीत सुनेंगे।

सिरिया गोसाल का न्यू सॉन्ग दोस्तों जैकलिन फर्नांडिस के साथ अभी आपने सुना। एक दूसरा गीत और है साध लॉन्जरेट गुली माता। ये एक अरबी मिक्स, इंडियन अरबी मिक्स आप सुनेंगे।

0: I love you.
1: Diafa 2023 Sadlam Jarat performing Guli Mata song. अभी आप सुने थे आफ्रिका हैप्पी स्टेशन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम. सोनू निगम, पद्मश्री सोनू निगम और एक बार फिर श्रेया घोषाल दोनों की मीठी आवाजों में कुछ कहा अपने. मूवी का नाम है, सॉन्ग का बोल है पहले ना देखता था यू मेरा दिल.

सोनू निगम एंड श्रिया घोषाल दोनों के मीठी आवाज में इस आप सुन रहे थे सोनू निगम। दोस्तों सोनू निगम प्रोग्राम आज और कल में लगभग 100 जी हाँ दोस्तों 100 गाना रिकॉर्ड किया है पद्मश्री स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का। और वैसे तो सोनू निगम गजल क्लासिक भजन और 13 भाषा में भी अपन गीत पेश किया है। एक बार फिर मिस्टर सोनू निगम या पद्मश्री सोनू निगम के आवाज में आप गीत सुनेंगे।

मर जाओ या जी लो जरा। दोस्तों आपकी बार सोनू निगम एक बार फिर, लेकिन उसका साथ देंगी अलका याग्निक। बिन अलका के दोस्तों ये गीत संगीत जो है इन दिनों में भी पूरी नहीं होते हैं। और अलका याग्निक एक गायकी है जो 3000 से ज़्यादा सॉन्ग पेश किया है। तो मेरी मोहब्बत का जाने क्या होता है, मेरी मोहब्बत को क्या जाने क्या होता है, सोनू एंड अलका।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दरबार गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और अदर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला जो
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 4 से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 यूनिनिक्री टू इंडिया के लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुए। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह ने तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकली फिर तख्तक में बना था, वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी निहनी स्टीफन फेस्टिक में एर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निगरिंग निहनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कन्नड़ा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपार्थ आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसमें उफन करते थे। अमरीश पुरी वैसे तो कई अवार्ड भी पाया, निधि अख्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1986 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1989 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1989 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1993 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटी रजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनो,
0: सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर्द भरे गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर्द भरा गीत खुशी खुश रहो तू सदा, ये दुआ है मेरी पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और कीजिए कि दिल से निकली हुई शायरी की कुछ बूंदे बरसा दीजिए, तभी रंगीन महफिल में बहारें आ जाएंगी।
2: इस मौके के लिए मेरे पास कोई कला नहीं है।
1: वाह साहब वाह वाह वाह वाह वाह, सुना साहबान, हमारे शायरे आजम फरमा रहे हैं
3: इस मौके के लिए इनके पास कोई कलाम नहीं है। नहीं
1: साहब अजी, अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया।

ये भी होता रहता है प्यार मुझसे और शादी एक दूसरे से। जब जीना है तो फूलों की तरह महकते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो। किस्मत से मिली है ये जिंदगी, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो औरों को भी हंसाते रहो। की बार मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, माइटी मुकेश की आवाज में।

ओपन हार्ट सॉन्ग क्या हुआ तेरे वादा दर भर गीत के प्रोग्राम में आपकी बार घुंघरू के तरह बजता ही रहा हूँ मैं किशोरदा के आवाज़ में।

0: रहा।
1: साथ साथ जो खेले थे बचपन में, साथ साथ जो खेले थे बचपन में, वो अब सब दोस्त थकने लगा है। वो अब सो दोस्त थकने लगा है। किसी के पत निकल आया है, किसी के बाल पकने लगा है। सब पर भरी जमींदारी है, सब कोई छोटी मोटी कोई बीमारी है, सबको छोटी मोटी कोई बीमारी है। दिन भर जो भागते दौड़ते थे, सब धीरे धीरे चलने लगा है। उफ क्या कयामत है। किसी की लून की फिक्र है, कहीं हार्ट अटैक से शिकर है। फुर्सात को सबकी कमी है। आँखों में अजीब से नमी है। कल जो प्यार के खत लिखते थे, उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है। देखकर पुरानी तस्वीर आज जी भर आता है। क्या अजीब सा ये वक्त है, किसी तरह गुजर जाता है। कल का जवान दोस्त मेरा आज अंधेरे में नजर आता है। कल की ख्वाब सजाते थे जो आज गुजरे दिनों में खोने लगा है। उफ क्या कयामत है, सब दोस्त थकने लगा है।

क्या हुआ तेरे वाला दर्द भर गीत ब्रोकनहार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। जैसे मैंने वादा किया दोस्तों, तो ब्रोकनहार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम के बाद सितारों का सफ़र आप सुनेंगे, और सितारों का सफ़र में आज के प्रोग्राम में आप नंदा के बारे में कुछ बातचीत होगा।

हिंदी फिल्म एक्ट्रेस नंदा की जन्म 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। नंदा के पिता का नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था। उन्हें मास्टर विनायक के नाम से लोग बुलाते थे और वो एक सक्सेसफुल मराठी एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। और उनकी पत्नी यानी नंदा की माँ भी एक एक्ट्रेस थी, उनकी नाम मीनाक्षी थी। नंदा के पिता के मृत्यु 1947 में 41 साल की उम्र में हुआ, जबकि नंदा 8 साल की बच्ची थी। और ये घटा घटी थी इंडिया के आज़ादी के कुछ दिन के बाद। नंदा अपने घर में 7 भाई और बहन में सबसे छोटी थी। इस तरह नंदा को पिता का प्यार बहुत कम मिलते थे। इसके बाद नंदा की परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया। 1948 तक में नंदा 9 साल की उम्र में पहली बार बीबी नंदा के नाम से फिल्म मंडिल में आए। नंदा 1948 तक से 1967 तक बीबी नंदा के नाम से फिल्म में काम करती थी, जैसे कि फिल्म मंडिल, जग्गू, अंगराई और जगदी थी। नंदा दोस्तों नंदा ने शशि कपूर के साथ फिल्म जब जब खुल में काम किया और उसी फिल्म का एक सॉन्ग आप सुनेंगे।

नड्डा की अंकल फी सीताराम ने 1956 में अपनी फिल्म टूफा और डिया में नड्डा को काम दिया। 1956 में फिल्म भाभी में नड्डा फिर पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। फिर इसके बाद फिल्म काला बसार में भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई और फिल्म धूल का फूल भी एक अच्छी फिल्म थी। निखिल 1956 में नड्डा फिल्म छोटी बहन में एक अंधी लड़की की रोल बहुत अच्छी से की। इस फिल्म में नड्डा बलराज सहनी और रहमान के छोटी बहन थी। फिर 1963 में नन्ना देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में होफ रोल का काम किया। इसके बाद फिल्म तीन देबिया में भी अच्छी काम किया और बे आर छोपड़ा की फिल्म कानून में भी काम किया। 1963 में नन्ना फिल्म आचल बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की प्राइज पाई। नन्ना राज कपूर और पद्मिनी के साथ फिल्म आशिक में भी अच्छी काम किया। नन्दा ने फिल्म गुमनाम ने मनोज कुमार के साथ काम किए और उसी फिल्म का एक सॉन्ग

नंदा रजनी कुमार के साथ तीन फिल्मों में काम की, नीरी सेशन 50 में, तूफा और दिया, नीरी सेशन में कानून और नीरी इन सेशन में ढोल का फूल। नंदा शशि कपूर के साथ भी कितने फिल्म बनाई, नीरी इन सेशन में चार दीवारी, नीरी तुम सेशन में मेहंदी लगी मेरी हाथ, नीरी फैशन सेशन में जब जब फूल खिले, सेशन सेशन में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, नीरी सेशन में राजा साहेब और नीरी सी फिल्म तक में रूठा ना करो। नीरी फैशन सेशन के बात है कि फिल्म गुमनाम को जिसका गीत अभी मैंने पेश किया, इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ अच्छी काम किया। नंदा धर्मेंद्रा के साथ फिल्म मेरा कसूर में काम किया और फिल्म आकाश। नीरी नीरी सेशन में राजेश खन्ना के साथ फिल्म इस्तफाक में बेस्ट एक्ट्रेस के प्राइज पाई और नीरी सीफन तक में फिल्म द त्रीन और नीरी त्वीन सीफन तक में जोरू का गुलाम में भी अच्छी काम की। नंदा फिर जितेंद्रा के साथ फिल्म परिवार और धरती कहे पुकार के इस फिल्म दोनों फिल्म में काम की। संजय के साथ फिल्म बेटी और अभिलाषा में भी काम की। नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई से शादी की या करने वाली थी, लेकिन अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

नंदा नंदा अपने सहेलियों के कहने पर फिल्म डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ शादी करने वाली थी, जो नंदा से उम्र में बड़ा था। मगर शादी से पहले मनमोहन देसाई की मौत अपने फ्लैट की बालकनी से गिरने से हो गई। इस घटना के एक साल पहले नंदा के माँ की मौत कैंसर द्वारा हुई थी। नंदा बॉम्बे में कुछ परिवार के बीच रहती थी। नंदा के कुछ करीबी सहेलियों भी थी, जैसे वहीदा रहमान, आशा परेख, हेलन, सायरा बानू, मरासीना, शकीला और सबीन जलील। दुख की बात यह है कि नंदा की मृत्यु 75 या फेफन तक साल की उम्र में फेफन जुदक मार 2014 को मुंबई वोरसोवा रेसिडेंस में हार्ट अटैक से हुई

तारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। दिल में क्या है, आप फिल्म जरूर देखोगे। जितेंद्र और मुमताज दोनों का फिल्म जिगरी दोस्त का सॉन्ग आप सुनेंगे।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिक उक्त बुलेस्ट्रेफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम

तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आपको भी फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक ऑर्गामन हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट और खानिसात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं इंटरनेट के लहर द्वारा वर्ल्ड वाइड एंड द प्लस रेडियो ऑनलाइन भर एंड नतीलक यूरोपा भर में आपके जो रेडियो का संदेश है लोगों सुनेंगे। तो जरूर इस बात को आप याद रखना कि फाइव सस्ते डाउन सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो यही आप सभी से सदियों से काफ़ी दिनों से और हमेशा यही कहूँगा कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, वो आप आजमा कर तो देख। Beletijdens kantooruren op 070 365 22 47 of bellen op 070 362 2077. Dus job hier radio ka kaam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? To guzar is binti nibeden kiya ja raha hai ki aap jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane औरों को भी बनाएं, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उसी में तक दिफाएं सस्तक 2027 फिर तक पर, या तो आप तार करें अपने उसी में तक दी 2027 तक पर। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाएं। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा हमेशा की तरह करते रहना है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। एक अति सुंदर बयान रख चुका हूं प्लेयर में, कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुनेंगे, और लाते हैं इस जमाने के मशहूर गाने वाली डिग्रेट नीति मोहन जी साथ दे रहा है हैयत खान पनघटवा।

0: Zomeraanbiedingen bij Autohero. De Fox.
1: Jawel, je song, pan ghatwa. इस जमाने के मशहूर गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन जी के मधुर आवाज में और हय्यत खान के ग्रेट आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना. बिल्कुल नया नया सॉन्ग. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक और बिल्कुल नए नए आवाज है. एक नई खाना ट्वेंटक फिर ट्वेंटक देखा जाए दिल दे तार कुछ नए नए गाने वाली रूबी खान और संगीतकार जसीम शर्मा के सांच पर आप सुनेंगे ये बिल्कुल नया सॉन्ग.

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल तार, क्या बात है। महान गाने वाला इस जमाने का रूबी खान और जयसीम शर्मा, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय रेबल ऑन द हसन सदीक बॉयज। अगला बयान इश्क विश्क प्यार व्यार, इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम जी के मधुर आवाज में साथ दे रही है निकिता गांधी और मेलोडी, ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

Ishq Vishq Pyar Vyar, beautiful song from the movie Ishq Vishq Rebound. महान गायक, the great king of melody, जमाने का maestro सोनू निगम साथ दे रही थी निकिता गांधी और मेलो बी. अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है, दिल को छू लेने वाला नगमा, और दो महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का महान गायक जो बचपन से अब तक गा रहा है, मैस्ट्रो जावेद अली, और साथ दे रही है मलकाए हुस्न, मलकाए संगीत, द ग्रेट पलक मुशल. कंपोज एंड अरेंज बाय नरेश शर्मा एंड द सॉन्ग इज रिटन बाय कौशल किशोर. गुजरने दो तो.

हेलो दो महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का ग्रेट जावेद अली और पलक मुशाल मिलके ये अति सुंदर बयान को सुनाया। कौशल किशोर का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान कंपोज एंड अरेंज बाय द ग्रेट मैस्ट्रो नरेश शर्मा जी। हमारे प्रिय श्रोताओं वक्त हो चुका है कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। कुछ दोस्ती के बारे में कुछ भेजे हैं महान दोस्त हमारे जो शेर शायरी का माएस्ट्रो है और इतना शेर्स लिख चुका है कि उन्हें भी याद नहीं। गणेश भाई भूपेंद्र जी और वो कह रहा है आप सभी से कि आपकी यारी आपकी वफा ही काफ़ी है, आपकी यारी आपकी वफा ही काफ़ी है, तमाम उम्र और आसरा ही काफ़ी है, यहाँ मिलो देख के मुस्कुरान देना, जहाँ मिलो देख के मुस्कुरा देना, जीने के वास्ते ये आसरा ही काफी है। क्या बात, इन अंधेरों के लिए कुछ आफताब मांगे है, दुआ में हमने दोस्त कुछ खास मांगे है, जब भी मांगा कुछ रब से, जब भी मांगा कुछ रब से तो

दोस्ती चिराग है इसे जलाए रखना, ये दोस्ती गुल है इसे खिलाए रखना। हम रहे ना रहे इस जहां में, हम रहे या ना रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में बसाए रखना। सादगी में एक अदा इतनी प्यारी लगी, सादगी में एक अदा इतनी प्यारी लगी, आपकी दोस्ती हमको सबसे निराली लगी। ये ना टूटे कभी यही दुआ है, ये ना टूटे कभी यही दुआ है, क्योंकि यही इस दुनिया में हमको हमारी लगी। कल फिर यही समा होगा, हम में से कौन ना जाने कहाँ होगा। मुरझाए फूल तो मिल जाएंगे किताबों में यारो, मुरझाए हुए फूल तो मूल मिल जाएंगे किताबों में, पर बिछड़े दोस्तों का शायद ही कोई पता होगा। आखिरी शेर, आंसू बहे तो एहसास होता है, आंसू बहे तो एहसास होता है, दोस्ती के बिना जीवन कितना उदास होता है। उम्र हो आपकी चांद जितनी लंबी, उम्र हो आपकी चांद जितनी लंबी, आप जैसा दोस्त कहाँ हर किसी के पास होता है। तो ये था कुछ शेर समर शेर की चाहने वालों के लिए। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने के एक और मशहूर गाने वाली द ग्रेट तुलसी कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे 17।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सतरंगा, महान गायक इस जमाने की द ग्रेट तुलसी कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक अरेंज बाय श्रेयस पुरानी। अति सुंदर बयान आप सुनेंगे जो मैं रख चुका हूं प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम, अरमान मलिक जी के साज और संगीत पर और उन्हीं के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। लोकी चंद कोटी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, हर की पौधी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग हर की पोदी, मशहूर गायक, म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर अरमान मलिक जी के ब्यूटीफुल आवाज में उन्हीं का कंपोज किया हुआ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ओ पिया ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का महान हसीन गाने वाला जोड़ी द ग्रेट पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल मिलकर सुनाते हैं आप सभी को पिया ओ पिया, महान संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान के सांच पर।

0: Beautiful song, wonderful song, Pia oh Pia, इस जमाने का महान संगीतकार जोड़ी गाने वाला the great पवन दीप राजन और गाने वाली अरुणिता कंजिलाव के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय सलीम सुलेमान। अगला बयान, दिल तेरी याद में रोता है, दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का ग्रेट सिंगर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सवाई भट्ट जी के मधुर आवाज में, हिमेश रेशमिया के लिखा हुआ और सजाया हुआ ये अति सुंदर बयान।
1: तेरी यादों से भीगा हुआ मेरे दिल का हर एक कोना है, तेरे पहलू में सर रख के जी भर के रोना है।

अरे आ जाना, दिल तेरी याद में रोता है, क्या दर्द है ये महान गायक के आवाज में, दिग्गज सवाई भक्त के मधुर आवाज में और हिमेश रेशमिया के साज और संगीत पर ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है और अभी आने वाला है ना, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एक और महान गायक हमारे इस जमाने का, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सलमान अली जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। उनकी आदत सी अनुज साइनी के ग्रेट कॉम्पोजिशन में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे।

बयान दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाया आप सभी को इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट सलमान अली जी। और देखा जाए नवाब सवाब आफ्ताब के सांच पर और नवाब राजा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान उनकी आदत सी। हमारे भी प्रिय श्रोताओं ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा और उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि मेरा पेश किया हुआ कार्यक्रम यही सोचता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप सभी से फिर आवाज के जरिए। दोस्तों जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ ना, आदत सी पड़ गई है।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बलैश्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, जहां पर भी जिस हाल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर जरूर फाउन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा यारो। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं कि फाइव सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अब मात पर हम लोग बना कर जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सारी जानकारी आप तार करे तेईस कंटोर अपने सीफ तक द्रिफेंस एस तक ट्वेंटी ने फिर तक पर, या तो आप तार करे अपने सीफ तक जो भी रेडियो का काम हो दैन कान फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने फेर तक पर, या तो अपने natuurlijk tijdens kantooruren. Abijeld, sigeld, faun, hindustani, radio, kamember, bene, auro.

वरा के मुताबिक एक हिदम बढ़ते हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, और उसमें कुछ सरनामी चटनी और कुछ सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स फ्रॉम सुरीनाम आप सुनेंगे। हॉलैंड का भी कुछ गाने वाले हैं। तो अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और वो सुनाने वाला है जबरदस्त कलाकार सुरीनाम देश हॉलैंड देश का, द ग्रेट सिंगर ऑल अराउंड म्यूजिशियन द वन एंड ओनली सुजल उमराव जी के ये ब्यूटीफुल चटनी ब्लैम।

Shabash, beautiful song, Chetni Blam by Maestro Sujal Umrao. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है, आप जोर तोर से सरनामी संगीत सुन रहे हैं। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो चटनी क्वीन फ्रॉम रॉटरडम, द वन एंड ओनली ऑफ कोर्स अश्नी माता दीन फ्रॉम द बैठक गाना ग्रुप मीरा एक्स ने ये अति सुंदर बयान को तैयार किया है, सोने के माला।

मशहूर गायक हमारे ऑल इंडीज का द ग्रेट शिवम राजाराम विथ हिज बटरफ्लाई मैशअप। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडीज का, जो काफी बार सुरीनाम जाग जाकर अपना प्रोग्राम दिया है और लोगों को बेहद पसंद है सुरीनाम हॉलैंडीज में, और खास करके महान गायक नदीम खान जी के स्टाइल को अपनाया है मैस्ट्रो संजय जोधा। रहे ना रहे हम

Beautiful song by Maestro Sanjay Jodha from the music formatie Exclusive. तो यार आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम में आप एक आखिरी बयान सुनेंगे और वो भी डायरेक्ट फ्रॉम सूरीनाम, द ग्रेट सिंगर मिस्टर केके फ्रॉम सूरीनाम, कविश काल का सूरीपॉप 2024 यूनांगामी।

सुनाया आप सभी को इस जमाने का मशहूर गायक द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सारित दत्ता, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ जबरदस्त गायक है जो आप अभी सुना। अगला बयान मेरे महबूब मेरे सनम फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज। एक बार फिर काफी दिनों बाद उदित नारायण और अलका याग्निक टुगेदर विद दिस सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Die voelzang, mere mehboob, mere sanam in een nieuw versie from the movie Man Marziyan. Udit Narayanan Alkayagni ke beautiful awaaz mein thi sundar bayan aap sabko taune suna. Alfaz the Javed Akhtar ka aur compose kiya hai ye thi sundar bayan ko the great Annu Malik ji. बयान आप सुनेंगे जो फिल्म मन मर्जियां और इस बार आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं दो मशहूर गाने वाले इस जमाने के जो काफी नाम भी कमा चुका है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभी घोष और अमृता भारती मिलकर सुनाते हैं म्यूजिक कंपोज बाय राजकुमार सेन गुप्ता एंड अभी घोष और लेखक है इस गाने का संजय कुमार गोंड मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग.

करने लगा है मन मर्जियां। अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। गाने वाले थे अभीक घोष और अमृता भारती। म्यूजिक कंपोज बाय राजकुमार सिंह गुप्ता और ये अति सुंदर बयान को लिखा है संजय कुमार। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार, दुलार, प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। एना तिलक हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को हिल फील लाइस्टर प्लेजीर टू हेवेंस्ट। After the break, kahin jana

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक महान गायक, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जिसपे मैं नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना महान महान काम किशोर दा ने किया है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, इस हेल मूलक्त एई फनार। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, तो उन्हीं के मधुर आवाज में आप सुनेंगे मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टरो मदन मोहन, आज मुझे जल जाने भी दो। लफ्ज़ों पर जरूर ध्यान दीजिए ये नगमा, क्योंकि आपका दिल छू लेगा। मास्टरो मदन मोहन की साज पर संगीतकार का बादशाह और शहंशाह, द वन एंड ओनली किशोर दा।

A masterpiece of composing by the God of Music. Dat was ook zijn bijnaam, the great Madan Mohan ji. Aur sunaya aap sabhi ko, mahan gayak jis pe hame naaz hai, wo hona bhi chahiye, the one and only Kishore da. Agla bayan ek aur ati sundar bayan hai, jo khas karke बहुत ही मन लगा कर ये नगमा को तैयार किया था मदन मोहन जी. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि मदन साहब जी का ए इन्फ्लुएंसर ग्रोस्ट हॉबीज वाज ओक कोक. तो वो अपने गायकों को और अपने को म्यूजिशंस को बड़े प्यार के साथ खाना भी पका कर खिलाता था. तो ये नगमा अगर आप जो अभी सुनेंगे, तो वो पहले मन्ना दा को घर पर बुलाया, पहले उसके लिए खाना पकाया, खूब खिलाया और बाद में ये धुन उसको सुनाया. और नतिलक हत एंट रेसोतात माहर ओक. वही से हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये फिल्म देख कबीरा रोया 1957, एवरग्रीन सॉन्ग बाय पद्मभूषण मन्ना दा. Om kippenvel van te krijgen. Ik krijg het ook achter de knoppen hier nu. Ik weet het zeker dat u het ook thuis zal krijgen. Kaunaya, mere man ke dwaare.

0: A masterpiece of composing by maestro Madan Mohan और सुनाया आप सभी को पद्म भूषण मन्ना डे जी, लेखक राजेंद्र कृष्ण। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, कुछ अनसुनी बातें आप मदन मोहन जी के मुखारबीन से खुद आप सुनिए। आप लोगों को तो मालूम है मदन मोहन जी भी बहुत ही बेहतरीन गायक था, बहुत ही सुरीला था और कुछ गाने गाए हैं, तो कुछ दिनों में मैं ज़रूर उनके गाए हुए गाने आप श्रोताओं को सुनाऊंगा। तो कुछ बातें रफ़ी साहब जी के और लता जी के बारे में वो आप सभी को सुनाएंगे।
1: संगीत रचना भी एक तरह का नशा है। सूरज ढल चुका था, सामने जान था, मीना थी और फिल्म शराबी की एक सिचुएशन, तो जो ही जरा जान खाली होने लगे, बस दो चार मिनटों में मैं सर से पांव तक एक नगमा बन चुका था। साजिंदों के हाथ साजों पर और राजेंद्र कृष्ण के होंठों से गाने के बोल फूटते हुए कुछ ऐसे।

बड़ा पुरदर्द गाना है ये, इसकी रचना भी बड़ी मुश्किल से की मैंने। समझ में नहीं आता था कि इस गाने के लिए कौन सा राग चुनूं। एक दिन सोचते सोचते अचानक मुझे ख्याल आया कि इस गाने के लिए सिर्फ नंद राग ही मुनासिब होगा। लता मंगेशकर और डायरेक्टर राज खोसला मेरे पास ही बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी राग में अच्छा बनेगा। बस फिर क्या था, रोशनी दिखाई देने लगी, गाना सुरों में ढलने लगा।

0: ये कुछ वीरे गाने थे जो मैंने आपके सामने आज पेश किए, और मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है, उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना ये कुदरती चीज है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। आपसे जाके चलता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, नमस्ते।
1: द ग्रेट मास्टर हिमसेल्फ। अभी आज कुछ बातें और कुछ नगमे जो मदन मोहन जी के दिल के करीब थे, आप सभी को खुद सुनाया। तो वक्त हो चुका है हमारे प्रिय श्रोताओं, कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य, मैन सहित के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारों, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री कामा गुर का, है इस एन बेल्किस कार्टूनिस्ट, थिएटर एन टेलीफिसी मेकर ओक टेवन पीएस वन लुक ज़ेब्रू, खबर 1956। और कामा गुरका ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, विल एन फरस्तांदिग मेंस गेलुकिग सैन, दन मुत है सैन फरस्तांद लेरन रिलातिफेरन। आगे में कहा श्री विलम फ्रीडरिक हरमंस, है वॉज एन नेदरलैंड्स स्क्राइवर एन लीफ्ड वन 1921 टॉट 1995। विलम फ्रीडरिक हरमंस ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, de mens zal eraan moeten wennen te leven in een wereld zonder vrijheid, goedheid en waarheid. Het zal binnenkort op de lagere school worden onderwezen. Deze oorlog is nog maar een voorproefje van de wereld die komt. En dat maken wij nu helaas mee, hè? Fromm, hij was een Duits-Amerikaans filosoof en psycholoog. Leefde van 1900 tot 1980. Erich Fromm, ne kahe manushya ke bare mein aroki. De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken, te worden wat hij potentieel is. Joseph Edison, hij was een Engels politicus, schrijver en dichter. Leefde van 1672 tot 1719. Joseph Edison, nekahahe manushya ke bare mein aroki. Wat is het een absurd iets om over alle waardevolle onderdelen van een mens heen te gaan en onze aandacht te bevestigen op zijn gebreken. ज्ञानी बुद्ध भगवान ने भी कुछ कहा है मनुष्य के बारे में। बुद्धा है वॉज एन स्पिरिचुअल लीडर, गेबोरन अल्स सिद्धार्थ गौतमा, लीफ्ड फन 370 टॉट 450 फोर क्रिस्टस। और बुद्ध भगवान ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, बै एन लिख्तसिनिग मेंस ग्रोइट द लुस्ट अल्स एन स्लिंगर प्लांट, है होल्ड फन हेट एने बस्तान नार हेट अंदर, als een aap die in het woud vruchten zoekt. Henrik Ibsen, hij was een Noors dramatist en dichter, leefde van 1828 tot 1906. Henrik Ibsen, nekahai manushya ke bare mein aroki, geestelijke eenzaamheid maakt krachtig. De sterkste mens is hij die het meest alleen staat. Schopenhauer, hij was een Duits filosoof en leefde van 1788 tot 1860. Schopenhauer, nekahahe manushya ke bare mein yaroki, hoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen. Thomas A. Kempis. Hij was een Nederlands middeleeuws Augustijner kanoniek, schrijver en mysticus. Ja, wat heel wat. Leefde van 1380 tot 1471. Al Thomas A. Kempis nekai menusje kebarmerki. In het oordelen over anderen doet de mens een onvruchtbaar werk. Zeebad. George van Akker, hij was een Vlaams dichter, leefde van 1919 tot 2003. O, George van Akker, nikahai manusje kebarmiaruki. Omdat men de gedachten niet gevangen kan zetten, neemt men er de mens bij. En de laatste van vandaag, kahai Sri Søren Kierkegaard. Hij was een Deens filosoof en leefde van 1813 tot 1855. Als Søren Kierkegaard nekahai manusje kebarmiaruki. Omdat verveling toeneemt en omdat verveling de wortel van het kwaad is, kan het geen wonder zijn dat de wereld achteruit gaat en het kwaad toeneemt. Dit kwaad was al in het begin van de wereld aanwezig. De goden verveelden zich en dus schiepen ze de mens. Tomai pri pri shrotaon abhi aap kuch kahavte kuch udaharan suna jo manushya ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, som heel lekker in baten komen ja, aap sota ko suna ya ki in baten se kuch na kuch to hum log jarur sikhenge na. To zara gaur farmate hue program ko aage badhate hai yaro. Lata didi jo मदन मोहन साहब के बहुत ही करीब थी, भाई बहन का रिश्ता था, जबरदस्त रिश्ता था भाई बहन का, और जितना काम ये दोनों मिल के किए हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जितने हम लोग तारीफ किए जाए ना, कम है यारो. तो लता जी के मधु जैसी आवाज़ में आप कुछ बातें सुनेंगे अपने प्यारे सा मदन भैया के बारे में.

बड़ा ही लंबा अरसा होता है, और जब तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, उस जमाने की यादें ताजा होती हैं, तो एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मेरा नाम थोड़े बहुत लोग जानने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि अभी बहुत सी मंजिलें तय करना है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मैं खुश थी कि इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे याद किया। मैं खुशी खुशी फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंची। पता चला एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, शहीद। उसी का एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। न मैंने कभी उन्हें देखा था, न गाना सुना था। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। ये जानकर हंसी आ गई, मालिक के बेटे का संगीत से क्या संबंध। अब डुएट का क्या होगा, मेरा क्या होगा। भाई और बहन का गीत था, बोल थे पिंजरे में बुलबुल बोले, मेरा छोटा सा दिल डोले। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गाए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में जरूर गाइएगा। ये थी मदन मोहन से मेरी पहली मुलाकात। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आंखें। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज राखी का दिन है, लो मुझे राखी बांधो। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।

ये कुछ वीरे गाने थे जो मैंने आपके सामने आज पेश किए, और मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है, उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना ये कुदरती चीज है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। आपसे इजाजत चाहता हूँ, भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक

सुंदर सुंदर बातें आप सुने लता जी के जरिए, और खास करके मैस्त्रो मदन मोहन जी के कुछ अल्फाजे आप सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, यही तक था आज का ये हसीन स्पेशल मैस्त्रो मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

फोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बिलोस्त्र इंटरनेट के लहर द्वारा फोन fm.nl पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, और जहां पर भी हो जी साल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड बर्डंक बॉयज एंड गर्ल्स जो भी रेडियो का काम हो देन कन्फा हो हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से राम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें हो, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और मन हो या तो और गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफ़ायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफ़ायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप आसमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल तेडेंस कंतोर यूरो ऑफ 070-213-6598 ऑफ ऑफ 070-365-2247। जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De Guzar is bent in de binnen kia jara hai kia bhi jeld si jeld Fahun Hindustani Radio ka member bane. Au roko bhi banai aapko to dheer sara fayda hi fayda hai. Sab hi jankari uske bare mein aap tar kare. Op 070-365-2247 ya to op 070-213-6598. तो आप भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लामा बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम भी है। वादा के मुताबिक एक हिदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की ओर, और जिसे मैं आप सभी को कह चुका था अब आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच गए थे फिल्म जहूदी तक बीते हुए दिनों में, जो रिलीज किया गया था 1985 तक में, और इस मूवी में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न और मलकाए संगीत, वंस कौन ओ खेल खुद सिंह एंड शेर शायरी में बहुत ही आगे थी मीना कुमारी जी, उनके ढेर शेर्स के गाने बने और खुद अपने शेर्स वो गाई है, आप ज़रूर कभी सुनिए यूट्यूब पे तो ढेर सारे इनके गाने भी आपको मिलेंगे। संगीतकार शंकर जय किशन के साज पर आप सुनेंगे भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी के मधुर आवाज में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाहुदी, मेरी जा मेरी जान, शैलेंद्र के अल्फाजे।

प्यार करना हो तो सजदा कर दीवारों का, ये दुनिया

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। दोस्तों आज है शुक्रवार, फ्राइडे हो चुका है, 3 जुलाई, हाँ 3 तारीख जुलाई हो चुका है इस साल का। घड़ी को देखा जाए तो 1 मिनट ओवर जेस हो चुका है। अभी आप लोन हमारा को लेखा साथी सुरेंद्र बिरबल भगवान दीन के प्रोग्राम को सुना है। यहाँ से हम लाइव आपको देश और विदेश के समाचार हफ्ता यानी कि शुक्रवार को आज हम चलाते हैं, सुनाते हैं। और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है। दोस्तों मौसम देखा जाए तो घाम निकला है यानी कि धूप निकला है, घाम है काफ़ी दना शहर में। और आप जहाँ भी हो बस खुशहाल ही रहना।

तो दोस्तों आपको हम लेकर तुरंत चलते हैं अपनी समाचार की ओर और हम चलते हैं तुरंत सूरीनाम की ओर हम चलते हैं, हमारी जनता सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। तो सूरीनाम में भैया चिनुआ लोन सोना भी बड़ा जोर सा नाम में खोदे भाई, ना खाली जूका लोन खोदे है या का बोले ब्रासिलियान या दूसरा जात या आई एम गोल्ड खोले, चिनुआ सूरीनाम देश में भी सोना होना बड़ा जोर खोदे भैया। तो ऐसे चिनुआ सूरीनाम देश में सोना खोद के और फ्लिक लेके आयल है सोरखन हो परे, सोरखन हो फ्लिफेल पे उतरल है। हाँ ये बातचीत हो रहा है आय के यानी कि उतरल है सोरखन हो फ्लिफेल परमारिबो में बेनलान से आयल है और 4.5 किलो सोना रिवो खोद लेके आयल है भैया चिनुआ। तो उतरा सोना पाई से प्लेन लेके फ्लिकते लेके आयल लोग सोरखन हो पे 4.5 किलो रिवो खोद में से बेनलान से आयल है और कर बांट में उस सब एगो त्योता फिट्स में बैठले घरे जाई के भैया। अब घरे जात रहा भैया, रास्ता में एगो त्योता आलियोन आयले जेमा 3 गो लुटेरा रहा वापन ले के भैया कटली से ले के और बोले हैगा 2.5 किलो सोना ले के फरार हुई गए है रिहती खोम्पर स्त्रांत में। तो पारामारी भूमि का रास्ता का नाम खोम्पर स्त्रांत हुआ पे लेके ही भगल है भैया, 2.5 किलो सोना ले के भगल है। एकर बारे में अनखिफ्त भैल है तो सिपाही खोजबीन करे है कि के सोनवा ली से भैया, यहाँ बतावे है कि सोना 2.5 किलो लेकर लुटेरा भागे भाए। तो बोले नारे ऊपर फालखिंग सनार द खोपर स्त्रांत अनखिफ्त भैल है, ऑफस्पोरिंग अनहोडिंग बिना भैल है, खाली ऑफस्पोरिंग भैल है। और जैसे जैसे इसके बारे में खबर रहेगा आप लोग को हम बताएं, लेकिन तुए या ना हल्फ की नो सोना रू बारा ढेर है भैया। तो भैया गया दिन भी आ गया हमारा प्रोग्राम में, जन्मदिन बधाई हो। तो यहाँ पर और आगे चलते भैया, एक औरत के समय लाश ले पाई से भैया रवि, और ये पाई से सिरालको वेख कहीं सूरीनाम देश में, और एक औरत के लाइक मिलल है और वो गंधात रहा लाइक हुआ भैया। गंधात रहा मतलब कि अनबिंदिंग हो गए रहा, कई रोज से मारा पड़ा रहा हुआ पे। तो जो हुआ सब गैल है तो पाई से औरत के बिना कपड़ा के भाई नंग ढिनंग औरत वहाँ पे पाई से। और बतावे फोकस इसने इन्फॉर्मेशन बोले, एगो आदमी है अब सुख ना क्रोधन उगेल हाँ तू जाने हैं सबहन घास भूसा बहुत जोर जुका लोन तूरे हैं दवाई वाई बनावे के। तो के सब हम बोले क्रोधमान तो ये क्रोइडा गैला अपन जंगल में खोजे तब इ लाइक हुआ पाई से। और बताई गई हैगा तो संस्कृत लेखा फनन फ्रो, और बताई गई हैगा कि अने जब उके नंग ढड़ंग मिलल है द इज द कांस खरोद नाम लग दैट इज मिस ड्राइव इन इट्स इन इन दिस मोर स्पेल बोले तर प्लाट से वेरे लीफन लोग से लेखा फन फ्रो आन खत्रोफन। और बताई गई हैगा दी इन हु वेरे hij betrokken is bij deze zaak wordt naar onderzocht. Op sipahi khojbin kare ki kaun ke mari se bhaiya bataye vrouw met een lichte huidskleur en glad haar to i juka na bhaiya to ingi hui nahi ka bole brasiliano hui koi hui bataye een lichte huidskleur en glad haar in deze zaak heeft vooralsnog nog geen officiële vermissing aangifte gedaan. तो कर मतलब उजुका ना भैया हिंदुस्तानी हुई मलिनी हुई बा बोले चिकन बार है। तो ऐसे वांछित हो रहा है हमारी जनता, जैसे जैसे समाचार रहेगा आप लोग को हम बताएंगे। अब देखो भाई यहाँ और बात है, ओएम भैया ओएम जो है तो लोग जानो है
हम आप लोग के बताए थे कि एगो औरत रहा गयानीज रहा अपन स्टीवसोन के आंड बरिश के स्टीवसोन के आप लोग को बता रही पुराना साल के बात है, पुराना साल के बात है। औतियार रहा तो एगो द्रियन त्वेंतक यारख मामशेला तेई ओकर नाम रहा। तो और बोले हैगा एगो आठ बरिस के लड़का के को स्टीवसोन के जेकर नाम रहा येडन अमोर भोला ओकर लड़कवा के पीठी में भोंक के लड़कवा के मार ढारे रहा और ये भैला दोनों प्राणी में झगड़ा भैला कॉन्फ्लिक्ट रहा कालकिता स्त्रात में। तो ये लड़कवा के

औरतिया के दोस्तों स्ट्राफ मिले ले औरतिया के अबुलियो की कितरा दिन के जहलिया ई पाई से आंट बरिस के लड़का के ई और उचका बोले हेगा इकर बारे में बड़ा ऑफहेफ हुई के रहा सूरीनाम देश में दोस्तों। तो ई औरतिया के स्टीफ मुदर हैगा बताई गई हैगा देर तक यार के ओके सेल जहल मिलल है 13 बरिस के ऑफ एस कर इसे जहल पुराना साल 2025 में ई 8 बरिस के लड़कुआ के माढ़ाड़ेरा छोड़ी भोग के फुलखा से ओ एम वास एट दी आफन ही फकर ऋषि और स्थान तुसन द फादर फानेसला तो फर और बताए गए हैं अपाउ एंड दिन फ्रेंडेर मांशेला आदमी एक नाम रा अपाउ और एक वाक नाम रा मांशेला और इतना एक्सकालेर भैला ना है चल अल्कोहल हाद खने तो दारू ढकोल ढकोल दोनों पर दोनों लड़े हैं और जाए के 8 बरिस के लड़का के और ये जान ले ली भैया इतना फोटोब देखे ला इतना मोही लगे लड़कवा कोई के दे देवत पोस लेवत भैया के लड़का बिगी यहाँ आदमी कुत्ता बिलार पोस लेवे है इतना अच्छा लड़का सब कोई पोस लेवत भाए और जाए के 8 बरिस के लड़का के पेटी में और छोड़ी भोग के ये औरतिया मार ढाड़ी सो स्टीफ सोन रहा और फरक्लारिंग फन फादर ब्लैक दर हाफोन और फंक लो रिस्पेक्टफुली मार द स्फीयर ओम स्लिक ना दें से फ्रीनिंग सेक एर आन स्टोर दे दते अल्कोहल आन नाम फन उन बिरमान बोले औरतिया बोले तू आदमियाक बोले तू कहे गले बिरमान के दारू पी ले बाटे दार ना ऑन स्टोन अ वर्ड ऑफ विसलिंग बोले द फरदाख्त किंग फॉरगेट्स द वोनिंग बिनन एंड स्लोट सेक ऑफ गतुइगन फरक्लारे की औरतिया फर्नीलिंग आंद्रिखते इन द वोनिंग एंड एन मेस आउट द keuken pakte. Daarbij zou zij hebben geroepen dat zij de jongen wilde doden. Kort daarna brak de vader de deur open en trof zijn zoon in de slaapkamer. Toen hij had gehaald dat hij ook een mia gehele buurman lage daarop pie en aard bediske lardka gejaike jan se maar deze lardkwa jorotiak na raha u lardkwa raha voor andere huwelijk met de 8-jarige jongen werd nog korte tijd een teken van leven waargenomen. Bolle hij overleefd ter plaatse van gevolgen van de steekwonden in de rug, waarbij zijn linkerlong werd geraakt. Volgens de medische was er geen sprake meer. Ja, toen Ibari Doekke baat, een buurman die eveneens bij de gebeurtenis betrokken raakte, bevestigde tegen de politie dat hij de verdachte na incident heeft vastgehouden tot de komst van de politie. और बीरमान पिपा कल्ले से तो ऐसे बात है बड़ी दुख के बात है दोस्तों बहुत दुख के बात है 8 बरिस के लड़का के ओ एम एस 30 टेकन टेकन स्टीफ मुदर फॉर दो टेकन तो ओकर बाप के संगे रहे हैं और ओकर लड़का के 8 बरिस के जान से मार दी से हमारी जनता बहुत बहुत दुख के बात है। तो रोबी गयादीन के साथ है सिर्फ बी से चित्रा अवतार भी आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं साथ साथ धर्मेंद्र भी आ गया है धर्मेंद्र श्री भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं आपको बहुत बहुत स्वागत देते हैं सूरीनाम के लोग जितना हमारा प्रोग्राम की सुनते हैं आपको भी हम बहुत प्यार यहाँ से देते हैं। तो अब देखा भैया वापन जबरदस्त सूरीनाम देश में मिलल है और कौन वापन मिलल इलाखाल वापन मिलल है इलाखाल वापन मिलल है एगो पुलिसी ब्यूरो के नाम बा पोस्ट है रेडी दोती तो रेडी दोती जो ने हमारे जनाब लाका वात्रा कंती दोस्तों तो हुआ पुलिसी कंट्रोल भले रेडी दोती पारा में तो बताई गई इलिखाल बंदूक दुई को मिले लेगा बंदूक के लाई मिले और साथे साथ दुर्यक्ष मिले भैया करिया निशान तेरानों में दुई आदमी के पकड़ान है और बताई गई हैगा रेडी दोती में ही मिले ले योगदन सफाना में Tijdens de controle van een voertuig trof een agent in de dashboardkastje een transparante plastic zak aan met een substantie die op marihuana leek. Ja, op een 30-jarige bestuurder gepakt is. Bolle bijrijder, ja, geweer middelen, kolf zaten, scherpe patronen. Op bolle ECT, is het de terrorjaat hier over. Of is het ganja, panja, pieke, abdeko, ja, AOM was cute. Cultuur op traditie is nooit excuser voor seks met minderjarigen. देखो भैया मिंदर यारख बोले कुल्तूर तो जाने सबन बोले हमारे कुल्तूर में है
अमेरिका के मिंदरयारक के संगे त्रोव कर्सिकल तुरजाने बेनलांत में छोटा छोटा लड़की के सबन ब्याह कर दे हुए या अदमी हो या लड़का ले ले तुलंजुका के लड़कन को जानो है तो वह इससे बात

हे मकी भिया ओएम का बोले हैगा उपमार मिनिस्टर का बोले हैगा तू चाहे जोन जात के बाटे चाहे जहां जोन कुल तिर के बाटे मु बोले वेत में मेंदर यार के संगे तो के सेक्स न चाहि करे के। तो ई बात महाबली जेमी भी बहुत दिन बाद आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गया है। तो भैया महाबली आपको भी हम स्वागत करते है, इतना दिन बाद आइए हमारे प्रोग्राम में। साथ ही साथ फनेसा दोस्त फनेसा भी आ गया है। फनेसा आपको भी हम बहुत प्यारो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा लौंडा के नाच वाला भी आकर जुड़ गए। आप सबको बहुत प्यार यहां से देते हैं और स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में जुड़ने को। तो अब देखो भाई क्या हुआ बोले हैगा ओएम बोले है ना द्रुकलक बोले कुल त्री त्रादिशी में ना है मेंदर यारख के संगे सेक्स करके द बूस का फॉलक नर आन लेडिंग फन अन रसेंट स्ट्रफसाक एन इर फॉरल खरेक ऑफ द बस्केनर फन मेंदर यारखन। ओएम बोले है कुलतुरेल खबरेकन ट्रेडिशनल अन ट्रेडिशनल ओवरटेकन ऑन फैमिली अस्प्राक नोइट वर्डन खबरेक अस रेफार्डक फॉर सेक्सुअल मिसब्रेक ऑफ अंदर स्ट्रफवार फेटन ते तो जाने हैगा जैसा भनका बोले हैगा बोले पलवार बोले बिटिया के ब्याह कर दी या बेटुआ के ब्याह कर तू मेंदर यारख बाटे मकनीट ओ बोले बतावे हिया ओएम बोले उ सब एक्सक्यूजस ना है ऑन खाक द अख्त खरोन फन बतरकेंगे बोले तू चाहे जोन बाटे बोले वेद बुक बोले है सबके कानून एक है सेक्सुअल हैंडलिंग वार बे स्प्राक इस फन बिनन ड्रिंग फन इट लिखाम बे एन किंड यंगर दन 12 यार कुनन लेडन टू द गेवंगनिस स्ट्राफ आन मैक्सिमल 15 बरिस के 12 बरिस लड़की से और का बोले तू सेक्स के लिए 12 बरिस लड़की के नीचे ते तो के मिनिमल 15 बरिस के जल हुई से के भैया लोन श्री नाम देश में तो याद करियो हियां श्री नाम के वे थे तो हमारे देखा जाए श्री नाम से सुभाष भगवो भी आकर हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो भाई सुभाष आपको यहां से ने दनहा शहर से हम बहुत प्यार देते हैं और स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को। तो भाई सुभाष आप तो सुरीनाम देश में हैं तो वहां कानून जो है तो सबके लिए बना है ना कि जब तू झुका बाटो तो तुके मेंदर यार के संगे माखेगा लड़का बनावे के सेक्स करे के ओएम बोले बोले द वेट इज फॉर इधर इन ओक सेक्सुअल हैंडलिंग बेटर हुलक मेट ईमान फन 12 यार of ouderen, maar jonger dan 16 jaar zijn strafbaar wanneer sprake is van seksuele binnendringen. Ouders zo rabber is een nietje bij haar binnen te hinkereke. Daarom staat een maximale gevaar van bara briske. Ouders bolle geldboete van vijfde categorie. Het OM benadrukte dat zedendelicten tegen minderjarigen ernstig misbruiken. Bolle zijn er onder geen enkele omstandigheden worden gecontroleerd. Mensen bolle controleerd na hoe bolle ze van tjupe और कले वारफान उस तरफ बार से बोले बिरखर्स ओदर फैमिली लीडर गसाग ड्रागे से अंदर बर्ट्रोकनर वर्डन अपगरूपन सिनियालन फन सेक्सुअल मिसब्रेक में रिस्क टू नेमें एन मेल्डिंग टू मेकें बाय द पुलिसी ऑफ बफुक्ते इंस्टेंसीज बोले तुलो मेल्ड करियो सिपाही में और की कोई। अब देखो एगो यहां बताओ एगो रसेंट साग भले एगो लुंडा का नाम बा सनाईपी बीते हुए हफ्ता में बताए रे भैया सनाईपी भैया तुलोन से चाल में इडिया देखो ये ते इस सनाईपी के भैया कपड़ियन जहलिया में बड़ी मार मार लाते लाते मारी से सुभाष लाते लाते मारी से औरी का कर ले रहे को 15-14 बरिस के लड़की के स्वांगर कर ले रहा फिर तीन यारख में इसे इस स्वांगर कर दे रहा ते एकर माई गेल हा नालिश करे बाकी अपी का बोले है बोले तो हमार औरत है बोले तो लो हमें जहल ना दे से बोले हमार औरत है बोले फिर तीन यार के बोले हम लोग संगे रहे बोले हमार औरत है ओकर माई के नालिश कर दी छोड़िया के तो बोले हैगा आप के देर तक यार के फरलेंग भैले जहल में बा और बोले अनफरक्लारिंग थे इकनो पुलिस से मेजिस एंड फ्रॉ इज एंड दैट इज सिंस हर देर तीन देर लासी में तारीफ और बताई गई है बोले 13 वर्ष के रहा तब से हमें उसे रिलाची है और बोले हैगा बोले है द कैनर खाफ ऑन द मेजिक 13 14 15 यार एंड सम गफानन बिनन द कल्चर
als vrouw worden beschouwd. Bole 13, bole 14, 15, bole 7. Oké, chota ladka nees na dekhe, ko aurat nees dekhe hai. Vooral wanneer de familie daarmee instemt. Dat botst echter met de nationale wet waarin iemand pas vanaf 18 jaar als volwassene wordt gezien. To pahile tulun jano bhaiya chota chota minder jarige ladki log ke se biyah kar de wat raha. To aap loon isse bachaye kar rehna. Jo koi nalish kare bhaiya to jhutte ke jaiyo 15 bari jahal mein baith ko aur froiti kariyo gana gaiyo. Tehi to achha baat na hai. हम लोग के श्रीनाम देश में इरमा राम तहल सिंह आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो इरमा श्रीनाम में एगो राम श्री राम स्कूल है, श्री राम स्कूल है आई हैगा बोत्रो मांकी वेख लिफोर्नो में बा जैसे यहाँ बताए गए भैया। तो स्कूल में बड़ी बरैया गए ले भैया, बड़ी बरैया गए ले वहाँ पे। हाँ तो बरैया को मिलो स्कूल है ऊपर से दुई तारीख को एंट एग्जाम रहा मिलो स्कूल में। और बताए गए हैगा बरैया हुआ गए ले आल रेस्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन एग्जाम अफलेखन बस्ता द फ्रीज द स्लाख तो फॉर वार्डन फन देसर कट बरैया बड़ी कटाई काटी से लड़कन के भैया। द स्कूल ऑन मोखलक एंड लोकलाइजेशन एंड वार हेड बाय इन नेस स्टार्ट गेफेस्ट द स्कूल हिप द अफदेलिंग बताए गए हैगा कमसरियात की करी से। और बोले ना तो स्कूल बफिन से नाम उपमार बखराफ प्लास स्कूलिए के बगलिया में हुए कहीं पे भैया काबल बखराफ प्लास है। और बोले बेरी पेन है दी दिख्त बखरूत इस में हुखे बोमन। और बोले इवन इस इन द पंक फन अख्तर सेडे फन द स्कूल दिख्त बखरूत द स्कूल लेडिंग दूत एन ड्रिंगन बरूप तो बेरी पेन है। और बेरी पेन में बोले भाई बड़का बड़का जंगल परल है भूस है स्कूल के पीछे भूस है। तो वही मसे कहीं बरैया रहा और लाइक के लड़कन के काटली से तो लांटी के चाहिए बेरी पेनों सफा करे को इंतजार भैया। और वहाँ के बेरी पेन बहुत कम थी सफाफा हुए हैं वो। और वहाँ के बेरी पेन में स्वेरफट भी सूते भाई सफर हमारी बहू में और पास हुई है तो भैया उसे अपन अड्डा बनाई से। और लेडिंग पर जइयो सेफ बी के बेरी पेन भैया तो हुआ जो मट्टी के जहाँ हुए है हुआ ना देखा इतना बड़का बड़का घास भूस हो गए है। लांटी जा कुछ दिन बाद कौन चीज काटे है और मायर से काटे कुछ से काटे दवाई मा अंदर हाउत वर्थ नीत। तो वही समय बेरी पेड़ में जनावर घुस घुट बैठे वरफान मीन से वो बीत अलमाल वो क्यों श्री नाम नहीं फरकलाई का मैं नीदरलैंड एक बार उस अंदर सोम मैं वो क्यों तो दरू फरकलाई बीच हम प्रात सीता गौरी चरण गजरी आपको भी हम प्यार करते हैं कि यहाँ के बखरा फ्लास पे तो जइयो भैया। तो सोचिए हम कोनो पार्क में गई ली बाटी लातोदार एलक से सोचिए कि हम कोनो पार्क में बाटी बांगी बनावल एकदम चिक्कन है चारों बगल फूल बोवल है भाई दिन भर आदमी हुआ काम करे स्कोन मार्क करे है। और तू जइयो भैया तो हुआ तू बेरी पेन में बैठ के एक गिलास कॉफी भी पी पइयो भैया रिस्टक से अपन फैमिली से अब स्केट ले पइयो जो उनके मट्टी परल है घूम सके भैया इतना नेचर्स बनावल है दैट इज ऑल ऑफ बखरा फ्लास इन नीदरलैंड। तो बोले जो ये कम सूरी नाम है निश्फर खलाई के मैं नीदरलैंड नीदरलैंड ऑफ andersom, maar mensen, ik zeg wat de waarheid is. Oh hier op Sri Ram School ke piche jungle lagal hai, jahan itna dher badka badka bhus hai, aur baraiya jai ke school ke andar ke ladkan ke bara chhedai khiche di se, warfan hua pe ain't exam aur hamilo school ke. तो सन्नाम के जो रखेरिंग हैं उस सबसे हम बोलेला तरी तुलुन तरी चिक्कन इक्कन करियो जहाँ लड़कन हैं चारों बगल चाहे सफा करे अपने देश के सफाई जो नहीं अपने हाथ में है दोस्तों कोई और ना आए के करी दत मुतयुरी जैलफ खानदून रखेरिंग है पिकट ओवर मेंस मैया रखेरिंग तो जब देखियो भैया तो अपरे में लड़ते रहे है अपरे में लड़ते रहे भाई जब देखो तो लड़ते रहे है रखेरिंग में। तो सोचो तो कैसे चीजों आ जाएगा कैसे चीजों आ जाए। अब देखो देयना में भैया का बोले हुआ स्टार्स बखरूतिंग के ट्वी डजन सेशन ट्विन तक के बातचीत हुए है यानी कि स्टांस बखरूतिंग 2026 के वहाँ बातचीत हुए हैं। और उतरे में जोगी भैया इरफारत अनमी हैं भीषण बरिस से बैठल हैं और जोगी फ्राक स्टाइल करे हैगा वहाँ पे रखेरिंग से क्यों सुनी से कि जो खले से हुआ के आदमी लोन
पलवार धरे है, ई धरे उ धरे, तो एक बारे में हम लोग के फोर सीटर जो ने देना के और अश्विन अधीन के नामो ही लगल है। तो अश्विन अधीन एके बोले तो के बवाई से, तो के बवाई से बस इतने में अनका बोले हैं गया दिन, मतलब कि अधीन जो फोर से तर अश्विन अधीन है गा देना के, और जोगी के मौका ना दे इसे बतियाई के। बस जोगी बोले है उसे, बोले तू हमें मौका ना दे ले बतियाई के, बोले कि तू सोचे सो मान बोली रहा कि तू सबसे सलेक्ट देना फोर से तर बाटे। तब तो अधीन के लगल गुस्सा भैया, बस ओके जबरदस्ती बोले तू यहाँ से साल में से उड़ के तू भाग गया, बोले तो कहीं यहाँ पे नूडक तो के अंतरिम कर दे इसे, बोले नहीं तो माफी मांग। तो अधीन यानी कि जोगी बोले कौन चीज का मांग, बोले माफी तो तोके चाहिए मांगे के। तो फिर यहाँ पे पार्लियामेंटारी जोगी ईबीसी में करवाने में बोली से, बोले हैगा जोगी बोले हैगा मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अधीन फरखान साल फलातन, और बोले फिर यहाँ पे फरवेद अधीन पार्टीदक बाऊ ऑप्ट त्रिदन है ओपुसी ले ने, बोले कि जब ओकर आदमी फिर यहाँ पे यानी कि एनडीपी के बोले हुआ पे चिल्ला है जो कुछ करे, तब बोले ओके ना बोले ऑर्डर ऑफ द साक, बोले लाच खून प्रात। और बोले जब हम एगो बलंग रे पूछे तब बोले बेर हमें काटे, बेर हमें काटे है। और बोले कि जो ने हम अवस्थान पाए ग्रुफो आई क्यों हमें निकाल के बहरे करे, बोले वही चीज बोले जानबूझ के करी से। जोगी स्टेल दैट अधीन द फोर सीटर स्टूल सो मुतर फरलांतन आंसे द पार्लियामेंट नीट ओपन करेक्ट एंड ऑन पार्टीडक वेसे कान लेडन दार भी बना दुक्त रहे दैट द क्वेस्टी फॉर हिम नो नीट इज अफ्कस्लोटन, एक बेन नोख नी क्लार में देसे साक। तो ये बात है जोगी के हमारे जनता और अश्विन अधीन के बांची थे वे है। तो हमारे दोस्तों और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेके चलीला सिपाही लोन भैया सूरीनाम के सिपाही ना सबके विश्वास ना रह गए है, विश्वास ना रह गए भैया हीरा हाँ ड्रग्स के कारोबार करे भैया तलोन जानो है संदरई पे पकड़ा रहा एसएलएम के मोतर के नीचे लुकवाए रहा कई सिपाही पकड़ा ने भैया। अब यहाँ पे देख एक बात और है सिपाही पकड़ी एगो लौंडा के हाँ तो ओकर माई सुनी से कि इसी पहिया घूस लेवे है, सिपहिया घूस लेवे गो बड़ी खादीर कि और लुंडवा के पकड़े रहा दृश्य के साकोक में। तब मायावा गैल है सिपहिया लगे बोले हमार बेटा हुआ के तू छोड़ दे, बोले तो के हम पैसा देबे। ब्रिगेडियर फन पुलिसी एमएफ के बोले है तो ओके बोले हम तो के पैसा देबे, तो ओके बोले है 2500 यूरो

Ha, dat is toch. Boleh alai hajar 2500 euro. Boleh cahinga oke dewe ke. Ta iya ratia bicari apan bitua ke chodawe khatin. Sade 1200 euro. Oke deze. Zij maakte daarop 1250 euro over. Met de afspraak dat het resterende bedrag zou worden betaald zodra haar zoon was vrijgelaten. Afspraak Razi Payak hem dikte hem over Makkarila. 2500 5000 euro wat ook db. En 2500 euro wat ook db. Maar je bent wat chodi jij tap. Bakke ibericha derwa bent wat ke na chodra chod paise. Malum na hai kahai khatin. Bakke u na chod pa hoi se ke ओकर ऊपर अदमीरा होई कुछ कारण इना छोड़ पाई सा 2 तारीख जुली के अरे यानी कि ई इसको तो कुछ ना कर पाए बेटा हुआ के फॉर द रेक्टर चल गए हेख नखनेस फन देर तक दाखन इस फरलेंग अब मम्माई भैया बहुत तलेर खस्ताल हो गए तब इसको तो बोले जे तू हमारे बेटा हुआ के ना छोड़ाए पहले भैया हीरा तो हमार 1250 इरुआ लौटाड़ और तू जाने हैं कभी कभी कोई के जेब में जब पैसा चल जाए भैया तो चपक जाए ना निकल के फिर तरक जाए और नहीं बोरो हुई के अंते चल गए ओहो बतिया है तो सीता गौरी चरण ना तो ई अब सिपाही वेकर कर रोके हम ना दे 1250 एरुआ बस ई औरत काके बगैर अनखिफ्त कर दिस अब देखो भैया चकलस जे अनखिफ्त करी से भाई बस ई ब्रीखा देर के ओही के कोलेका पकड़ के बंद कर दिस और 2 तारीख जुली के चल गए ओए में भैया चीजवा फॉर द रेक्टर चल गए हैं और बोले ना द अफस्टिंग में द ओए इसे इन फर्जीकरिंग स्टेल तो जोन जहलिया में बिरखा दिलवन दूसर कोई के बन करत रहा अब अपरे जाए के ओमा बन है भैया देखो अब तो घूस लेवे तो भाई बताए सिपाही लोन हुआ बड़ी बनमासी करे है जेके तू सोचियो सुरिनाम देश में की सिपाही हमार बड़का कमरात है हमार बड़का दोस्त है हमें बस करम करेगा देखो वही सब कौन कौन धंधा यहाँ पे करे है तो गीता जी भी आ गए हमारे प्रोग्राम में और यहाँ पर जुड़ गए आप देखो भैया एक औरत बहुत रोवाई रोवे भाई इतना रोवे है कि हम का बताई ओकर आंस हम देखेला तो हमार आंख में से आंस चुईया है तो बांची धो रहा ई औरत के बिचारी के और ले गए है एक आदमी पेंशन में तो जाने तो कहाँ पेंशन वन है भैया हीरा सुरिनाम देश के बांची धोवे है तो ले गए पेंशन में भैया और ई लड़किया के ले गए औरतिया के और इना है कि बहरे के औरत है या कोई रा ओकर फ्रेंड रा भैया कई बरिस से संगे यानी 5 यार के उ सबके रिलेशन रहा 5 यार रिलेशन रहा और ले के पेंशन में तो यौरतिया के हुआ झगड़ा भइले तो अनमिया यौरतिया के बारे में संदलन करी से भैया पेंशन में परमारी बहु में और बताई गई हैगा बोले हैगा इंफॉर्मेशन बताए कोपल दान इन कायो कमरा हिर कर ले रहा और बोले इन खतेत औरत क्या रोवत गले रिसेप्शन लगे और बोले हम में तो सिपाही है स्काकल कर तो सिपाही गए ले तर प्लेक बोले हैगा अरे फिर द फरत्रोकेट कोपल उतरे में कोपलवा चल गया भैया दोनों चल गए रहा लड़ोड़ के getuigen verklaarde tegenover de redactie. Bolle de vrouw aangaf dat 5 jaar een relatie was. Wat de aanleiding voor de mishandeling na betaald. Sipahi avat aan hem jena dunu me phin summat hoi ge bhaai. Want dunu phin chal ge. Sipahi koi ke na paai se. Lekin news me to aai ge hai dosto. Te bari bari duk ke maan te. Je hebt een verhouding met iemand. Je houdt van iemand. Jhagda ladai hoi hai. Maar itra ki na tu koi ke mishandeling kar. Aur कोनो चाले भैया अब मैं सांदल करिए पेंशन में अब आज पूरा दुनिया जान गए हैं अब ये प्रॉब्लम में परल है दोस्तों अब तो लोन जानो है भाई निकेरी के बड़ुकिया क्वारंटाइन और गयाना के हाँ तो भैया दो रोहित भी आ गया है हमारे दोस्त भैया रोहित देव नारायण भी आ गया है देहा एयरफोर्स खुद के मैनेजर है तो रोहित भैया यहां पर मेरे ख्याल से
हाँ

चलते हैं अपना समाचार को लेकर। तो भैया तो रोहित अभी आ गए हैं फेसबुक हर में इफ़त राइट को इट भाई एक अपने सेल्फ निकालन ये वही बार टेक्निकल डिंगेस इस खबरते ट्वेल्व भाई एंड निकाल दे रहा हम ये निकाल दे इस तो हम क्या करें यार एक बार पर अपनी यू अलमाल मुझे स्टार्ट तो इसे मुझे इफ़ गाँ स्टॉपे मेरे न्यूज मैं एक हाँ न्यू इफ़ वेर डोर मेट मेन न्यूज मैन से और हम जाए भैया गायना और क्वारंटाइन के ओर हम जाए ला निकेरी के ओर भाई निकेरी के ओर हम जाए है तो आप लोग जानो है चांद संतोखी मांगत रहा बुड़की बनावे और बुड़की मांगता बनावे निकेरी से लेकर गायना में बड़ी खुशी रहा आदमी नोन कि कोई बुड़के लेकिन रखेरी लोन जो रहा बहुत क्लाख करतरा कि संतोखी मांगे बुड़की बनावे मांगे बुड़की बनावे बोले रास्ता बना ई बना कि अब इस सिमोन्स और एनडीपी रखेरी एनपीएस रखेरी जल से तीस बोले है बुड़किया चाहे दोरो बने के बोले बुड़किया हम लोग के चाहे बनावे के तो अब बात ई चीज भले सिमोन्स गैल है और कहा बोले गयाना के मिनिस्टर से इरफान अली से बातचीत करी से प्रेसिडेंट इरफान अली से कि ब्रोकिया हम लोग खसामलक बना खोई गयाना से और वो काबले निकेरी निकेरी के

तो अब काम भेल है चिनुआ भाई जो हम लोग के ओवी के मिनिस्टर हैगा ओवी दया नाम का बोले है मिनिस्टर स्टीफन स्टंग बोले है नेशनल असेंबली में बोले बोड़किया बोले गयाना ना बोले फ्लोरिडा बोले हम नून बना कोई सरनाम के आदमी बनाई बोले हम लोग गयाना से पैसा बोले हम लोग फ्लोरिडा मांगेला अपने बनावे ई बात बोले है चिनवा ओवे के मिनिस्टर स्टीफन सांग बोले नेशनल असेंबली में बोले हम लोग अपने बनावे बोले अपने तौल धरबे एकर बारे में इरफान अली जोन है इरफान अली हुआ से बमकल भाई कस के तू जाने लावला प्रेसिडेंट ना है गया ना के इरफान अली तो वो बमकल की ई कौन भाषा है वहाँ पे असेंबली में से बतिया है बोले बातचीत भैले है कि निकेरी के ब्रुक्की जो है गयाना के बोले हम लोग दोनों मिला मिल के बना कोई सरनाम और गयाना बोले ई जौन मांगे बोले दे बोले हमसे अस्परा के प्रेसिडेंट से सरनाम के और वो हैगा सिमोन से और बोले हम लोग के अस्परा के संघे बनावे हम लोग तो बोले कि कौन ची अभी बतिया है बोले ब्रुक्की चाहे खसामलक बनावे हम लोग के तो असेंबली बकेन करे बोले फलीरक हम लोग के मेडल से बहु हुई तो यहाँ पे जनता लोन बड़ी बड़ी चीज बतावे भैया असेंबली में बोले है और बहरे सोशल मीडिया बोले बोले कहे सरनाम अकेल मांगे ब्रोक किया बनावे बोले बौशे ब्रोक के तू लो अपरे जाने कितना लगल हो कितना ढेर सबर खाई पी के बनाए बोले यू मांगे पैसुआ बनावे का की मांगे अकेल बनावे वो जो चिनुआ आधा पैसा मुझे गया ना जो आधा दे पैसुआ तब तो तुस लखवा ना बनाई पाइये यहू बतिया है तू सलखवा ना बनाई पाइये तो ई बतिया खातिन जनता लोन बोले है कि काहे मांगे सरनाम अकेल ब्रुकिया बनावे सलाख मांगे बनावे का तो गयाना के रखेरिंग बोले है का बोले हम उस तंत में हौद करेला क्वारंटाइन रिफीर के ब्रुकी गयाना से बोले हम लोग मिल के बनावे बोले परमारी बिफ ऑन फंगन ओवर मोगल का कुछ वे सकिंग ऑन दंस द बरिख तें सिरे नाम द बरिख फॉलीडिक सेल्फ विल फिनाशियरन एन बसितन बोलो से मांगे अपने बसित करे अपने मांगे फिनाशियर करे और बोले है संग ही फिन खियाना तोर फ्रागन गलेद ओमदत द ब्रुख tot nu toe nog steeds werd gepresenteerd als een militaire megaproject tussen beide landen. Obole Hega, Guyana nog altijd uitgaat een gezamenlijke ontwikkeling. Quarantainebrug is een brug die gezamenlijk wordt besproken als een gezamenlijke project door de regering Guyana en Suriname, stelde Ali. तो एक बारे में जैसे जैसे रही हम बतावे बोले है जेनिफर सिमोन ही वखरी पंदर सुरिनाम बेशक वास डील फॉर बस्तांद यूरिडिस कादर अफ्तरोंद तरवल गयाना से एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरबरेनिंग आल हाथ अफ्रोंद और सुरिनाम में कहा भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक से हुए है वहाँ पे एक गो कम करते हैं एक गो आदमी डेवलप तीन तीन गो सलारस है कितना आदमी बैतलांत में है और वो सलारस एक भाव है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ना जाने है का रमिया कहाँ है काम पे आवे कि ना आवे है तो एक बारे में और काम बोले है मिनिस्टर फम्बे ने लांस झाँक कहेगा और मनीरस फम्बे बोले है कि तो कह जाए चुगली करे के बोले चुगली वाला चुगल खरवन के बोले है रोहित चुगल खरवन के बोले हमें तू बैल करके बताइए कि कौन अनमियन दुई गो तीन गो पावे है का बोले है सलारस बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले जो ने हम ओके पकड़ी बोले हमें बताइए गो एनोनिमस लाइस धरी से टेलीफोन नंबर बोले चुगल खरवन बोले बताइए मत तू जाने भैया चुगल खोर बड़ा ढेर दुनिया में ना अपने खाइन दो दूसरे के खाइन दी बाकी देश के चूसे है भैया तो बोले बताइयो तो ऐसे बतिया है अब देखो ब्रुकिया जो है 3.1 किलोमीटर के ब्रुकी रे भैया छोटा ब्रुकी ना है अतिस ब्रुक फ्रॉम 3.1 किलोमीटर मूड फॉर आउट द फियर फॉर बीइंग टू सोउद्रीन एंड सुरिनाम इन मोलिसोन क्रीक इन गयाना फरफांगन यहाँ बताए गए हैं प्रोजेक्ट पर खसीन अल बलानाई के फोर हैंडल टूरिस्म रुखियाल रीजनल फॉरबिंडिंग जिसन फ्रांस गुयाना एंड ब्राजील के बारे में भी है गया दोस्तों तो हम और आगे को अपना प्रोग्राम बोली ब्रुकिया के बारे में बता दें वन केरी के भी हमारा प्रोग्राम सुने हैं और आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि प्लानिंग हुआ कैसे एक सिपाही भैया चोर के न गए है दागे इरमा राम तहल सिंह आपको भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार हम यानी कि हमें फेसबुक हुआ निकाल के फेंक दे रहा दोस्तों माइक बैनर अलवेर तो
सिपाही भैया ना गए ले चोर के दागे अपरे के दाग ले भैया सुरनाम के सिपाही के बात बतियाई ला हमार जनता बोले जानी ये मुदी निमें से नहीं लख है हम नू सब के ना इट लख करी भैया जैसे समाचार तो बताई ला तो बताओ के 26 तारीख नवंबर के एगो सिपाही भाई अपन पिस्तौल से अपने आप के दागरे से फरकलाद दथा सुन दौड़ नारकोटिका बरिखाद वास आरखो द नादा थे में दृक्ष इंसान बसी था सिपहिया बोले ओकर बेटवा के नारकोटिका बरिखाद जो दृक्ष के बारे में ओकर बेटवा पकड़ ली से बोले द फ्राउ सोफिया फिया हैबर फॉर नोमन के ओकर बेटवा और फ्रेय फुटन सोडन वार्डन इन कस्टेल आसे 2500 euro aan de politie betaalde. Na te ihe, ik wou bij jou kabelen, hè? पैसवा वाला लेकिन जो सिपहिया अपने आपके दाग इसो के हैसलक खवेल त्राभाएं और जाए के दाग ली से अपरे के तो दोस्तों और आगे को हम जाना चाहते हैं और ये बात है आदमी बड़ा जोर कसीनो जाए सुरीनाम में भाई हाँ कैसीनो में भैया तो एक आदमी गए कैसीनो में बड़ी ढेर पैसा लेके भैया एक ताज पैसा लेके गए कैसीनो में और जो गए कैसीनो में उतना ढेर पैसा लेके बस कोनो कर तस्वीर मार दी भैया तासन में खरोट खल बराखन खस्तूलन फन कलांतन इन द कैसीनो अरे कैमरा है माँ भाई कैमरा में चाहिए पे को दरियन दर तक यार के चिनुआ बीते हुए हफ्ता में बोले होकर ताश जमा हजारन अमेरिकन डॉलर रहा बोले कैसीनो एगो दो मने स्ट्रांड में बोले हुआ से सबन चुराली से बोले जमा देर तक दैसन डॉलर रहा 10,000 एसआर दे रहा मोबाइल टेलीफोन रहा बोले हम खाली तस्वा छोड़ के बोले हम गली टॉयलेट अरे भैया उतना पैसा छोड़ के तो के लगल हैगा टॉयलेट तो अपन ताश छोड़िए तो तस्वा जो छोड़ी बस दूसर कोई मार दे इसे चिनवा तू गधा बाटे कैमरा बेल ब्लैक दत एंड मान द टास ऑफ सेंस कोट हाथ एंड दे इज अ टेजस दी लाम रुलेट ऑफ द ग्रोन लिट फॉलन एन अंदर बसुक दी अखतर हेमस्टोन हिव द टास में सेन फुट ना से टू गट्रोकन एंड इज एर वervolgens मी van doorgegaan. Familieleden van de man die eveneens in het casino aanwezig waren hebben niets gemerkt van de verdwijning. De politiebureau centrum. Ik er waren met khojbin kare de chinoa kal bane raha aur bole palwar na dekh pai sab to khali gutti taake hua bhaiya to yahan bataye gaye hai dar bhai 5000 SD bait gemaakt batawe hega afgelopen manger ke aangifte bhail hai dit keer werd een klant in de casino een 5000 SD bait gemaakt. Ook dit onderzoek is een handig dus doe je dan een chori hoi chukal bhaiya. Biet je hapta me hoa pe 50,000 SRD bhi chori hoi ge raha. To ye hai hamare bhaan janta. Hum sachi aap log ko ek geet hum suna di. Abhi ek ko gana na sunai li hai. Aur kon gana sunai ko chatni hum jaal suna.

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है तो हमें तो रोकना पड़ेगा अभी साइड, और आगे को हम फिर से चला देंगे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेके, यानी कि समाचार काफ़ी है भैया हीरा, आपको हम स्वागत फिर से एक बार करते हैं। और फेसबुक हाथ में इफ द राइट को हुई मैन से मा एक मैन वेयर ऑनलाइन। अब देखो हुआ है क्या भैया, सोमो हार्जो का बेटवा जाने पॉल सोमो हार्जो भैया बरोन तो रहा पेयल फ्राक्सी फोर से तो रहा फ्राक्सी लाइदर रहा तो ये आदमी फिर यहाँ पे के ग्रुप में से फिर से एनडीपी में चल आए। अब फिर यहाँ पे में ब्रंसवाइक से झगड़ा भैले, बड़ी बड़ी बातचीत भैले, बड़का बड़का बात बोले, अब एक का बोले स्टार्टिंग में मिलल है मुतर बैर ओएम खान। अब ब्रोन तो का करे भैया, अंदाज बहुत तरक करे हैं तो एगो लेस ले फर करे से दे आना के जेमा 200 नाम है स्टिकटिंग के। और बोली से कि जेमा In din de nationale bolle PL beweerde eerder dat bestuurs- en hoofdbestuursleden van de VHP deze de vorige regeerperiode via stichtingen dessen go jagaha leise en bolle kali $1,000 bharise. Bolle ab kontje we na nuanceerde hij zijn eerdere uitspraak en stel dat hij de grondconversie door een bepaalde partij werd gebruikt om witwassen te faciliteren. Volgens de politicus gaat het om een eerste dossier en zal hij stap voor stap bolega septo ke batabe. Ik er baren met je minister se van grondbeleid ke poochie se te bole abbe kuch na hega jono sabke bewijs se. Ik blijf er bij de grondconversie door een partij werd gebruikt witwassen van de faciliteit. Of bole he, ik er baren met VH P-fractieleider Aziz Kumar Gayadin bole hè, bole i bout ernstige zaken, John Somo Harjo aanhalen dat grondconversie door bepaalde partijen werd gebruikt voor de witwassen, maar duidelijk bole VHP admi khali jagah leise. Ik er baren met DNA voorzitter Aswin Anbin bole kwalijk dat hij zo'n uitspraak met zijn hamer heeft laten passeren. Bole itra badka beschuldig kreeg ke VHP non aise karise. Bole Aswin Anbin bole कुछ ना बोली से बाकी जोगी ये कोई चीज पूछी से रुके निकाल के बाहर कर दी से एंड दैट फिनिश ऑन एयरलक मेन से एक बार मिनिस्ट्री स्टैनली सुरो पावीर जो खरोन बलाई फन बॉस बहिर के है वो मेरकर करे ऑफ द स्टिकटिंग एंड वार ओवर सम हार जो है थी नोक ऑन द सोख मुतन वार्डन बोले बेचे हैं सब ऑन द सुख हो के अब बोले लाइक के एज लेजर दिस वही के आदमी अनखसिन है ऑफ कॉम्प्लेक्स साकन खान सो से ने खफाला वर बे conversie heeft plaatsgevonden terwijl er rechtszaken gaande waren, dus al zijn dit al afgerond, er kleven nog steeds problemen. To iemand heeft sommige harde kebetwa, Bronto bhaiya, Bronto zit onder vier mensen, want hij, de lach van hem is er niet meer, want hij moet bij de OM gaan, ook er op een zakje le bhaiya, kuketra paisa, fraudeer karisega. Dus dat zijn de zaken, op deko bhaiya, tulunjano Suriname, je stroom ke paisa na bharie, te kaate me khelwaar na kare bhaiya, aai ke काट दे बाकी द ग्रोस्ट वन बतालर इज द ओवरहेड इन सुरीनाम जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आशा जो स्ट्रोम के पैसा ना भरे आई के काट ना देवे है बोले हम लोग काट स्ट्रोम है ना पे बाकी यहां बतावे है का सबसे बड़का वन बला वन बतालर जो ने लांटी है जो ने ईबीएस के स्ट्रोम खबर है के कर पैसे ना भरे 7.45 मिलियन एसआरडी अखतर स्टंट हैगा ओवर हेट ईबीएस के भाई इज द ग्रोस्ट वन बला वन बतालर। और बोले एकर बारे में अन मिनिस्टर अन बोले है interim van de natuurlijke hulpbronnen wat eigenlijk he bolle he gaan de wet staatsbegroting 2026 meker waren me vitalise ki ABS inmiddels 745 miljoen bolle he na paise volgens huurbedrag de achtste staan bij de ABS. Op bolle huur benadrukken dat de overheid alles in de werk moet stellen om de aanzienlijke betaling achterstaan weg te werken. Zij deed daarbij ook een oproep aan haar collega minister van de Financiën de plichting. De Oesap bolle he, otra paisa, bolle na paise.
EBS भैया, और जो तू वहाँ पे 10 रुपया ना भरिए तो आई के बरौन पे आएंगे लेके खट से काट दे भैया से इखल कर दे। और ऑफर है कि सिर्फ 100 मिलियन है ओके कोई कटवे ना करे है। तो ये बात है, तो हमारा बहन मुन नारायण भी आ गया है और वो है पथवानी का से दोस्तों, तो आपको भी हम स्वागत करते हैं। तो हम चलते हैं अपना और प्रोग्राम के बारे में। तो यहां बताए गए हैं दोस्तों, यहां बताए गए तो लोग जानो है फिनिसवेला में मदुरा के जनवरी में 3 तारीख जनवरी का अमेरिका वही घर में मच्छर पकड़ ले गया तो लोग जानो है। और फिनिसवेला में इतना काबल बवंडल चल रहेगा और बेफिंग रहेगा, बहुत ढेर आदमी मर गए है, हेल्प खोजे है और हम मदुरा खाली मांगे वहाँ पे निकले। अब मदुरे के आदमी फिनिसवेला के मदुरा के ऊपर शोल कर सेगा कि 5 आदमी के जान से मरवा दे इसे फिनिसवेला में। मदुरा जब यहाँ पे रहा अब ओकर ऊपर रक्षाख बोली सेगा, बोले अब तू पैसा भर, एक तो मदुरा प्रॉब्लम में अपरे है दुरक्षाख में और ओके और वही के देश के आदमी जाए के 5 गो थोप दे इसे। बोले हैगा 5 गो लंडन के ट्वीट जैसे सीफन 3 में ट्वीट जैसे इनन ट्वीन तक में आई का बोले मदुरा और द्राख दे इसेगा एक स्पेशल एक्शन फोर्सेस के कि 5 लंडन के डाक के माढ़ाड़ी से एक्सक्यूजेर करवा इसेगा। यानी कि मदुरा अब एकर बाग में सब साख लड़े हैं मदुरा तो और बड़का प्रॉब्लम में पड़ जाए भैया। और बोले मदुरा एंड फ्लोरस अब खपाकिंग काराकास वो कर ऑर्डर के पकड़े रहा 3 तारीख जनवरी में अमेरिका से त्रुप होकर घर में से ले गए रहा है एक पर वैदा नाना डफरेन साथ इन ओख परा एंड से दिल फास इन न्यूयॉर्क वार बेदन हिस्ट्राफ साखन अफवाखतन से है वही जनवरी बेहद इस फर्स्केने फोर रेखतन अनस्कुल्ड खपलाई। तो यहाँ बताए कि बड़ी लंबा चौड़ा होकर बारे में लिखल है दोस्तों, लेकिन मदुरा के बारे में हमें इतने बताईला। अब जब ओके एस के शिष्य के बारे में हुई तब तो और बड़का बातचीत हुई भैया। देखो गया ना छोड़ो हम जाए तरी नाफो के बारे में, नाफो भाई नाफो उक्रेन के सीफन तक मिलियार फ्राई करी सेगा तो ये देर तक लंदन नाफो के इस सब अंकारा में बताया सेगा कि सीफन तक मिलियार पैसा देगा उक्रेन के और का बोलेगा जो रसलान से लड़िया होकर अंडरस्टैंड करे के फील फॉर द हेल्थ इस ऑल द यूरोपियन यूनियन ऑफ द लंदन ऑफ सोनलक बलोव मार उक्रेन से बन खनो दे विल्डन उक्रेन verzekering van een gestage stroomsteun en een bedrag daarom vastleggen in een slotverklaring. Of toen in januari Madura banai zo'n barca fabriek bij ja, daar hebben we drone uraven he, en drone uraai uraai in Rusland me, hoe ik olie raffinaar de rij me, dak ke plata kerde ze, en aanj Venezuela zo'n etra barca export land raha, तेल के ओके अपने ही आदमी को के तेल ना रहेगे है भैया बेचे के आदमी लोग 30 बोतल पावे 15 बोतल पावे लंबा लंबा रही में खड़ा है। तो लोग जानो एक जमाना रहा सुरीनाम में भी हम लोग रही में खड़ा होते ली तेल कीने के उस समय पे तेल स्कार्स रहा सुरीनाम में भैया बहुत उसके रखे रहेंगे बातचीत है। तो ये

0: make sure anybody getting married, you know.
1: तो यही चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार। इधर इन बाय बाय, स्वाई स्वाई धर्मेन, इधर इन बाय बाय।

पुंताओ और पुंता वानी किरमी। तो दोस्तों जवानी याद हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो और क्या है, क्या है अगला गीत, ईवान की ओर हम जाते हैं, आओ सुना जाए। यो भी बॉबी सॉन्ग।

so far.

फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी और चित्रा लोवे चित्रा कोई के साथ भाग्य है और ये कौन चित्रा है सब चित्रा ना भाग्य वाला है कोई भग जा है सर मक्का कोई भग जा है कंडाल कोई भग जा है वेलखदा खा बे से देई में भग जा है और कौन चित्रा है ये आप लोग जानो अपने प्यार के धोखा दे दे कभी कभी लोग भाग जाते हैं तो हम चलते हैं कपड़ा धोने के वॉश मशीन में।

ये दोस्तों मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थे। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी तो

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और वो खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो,

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: और मैंने भी राह रहेरी। उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ। और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shot Kerwal on the beat.
0: And beat.

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

रमदान योगी, रमदान योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

अरे प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टर्क तो बेंस। और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। चाहे आपके परदेसिया यहां हो, दनहाख में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Oh.

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया एंड मेंसे नाद परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर।

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट से और होते हो पे जब कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरी सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुखा चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुखा चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत एंड सेस्टक का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत दोस्तों देखती हूँ एहसास फेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मौफी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien. Maar hamare dosto jo hai yahan pe radio par, wo sab is film dekh chuka hai. Aur humse kaha ki Johnny, jarur chalana, to hum jarur chalayenge, aao milkar suna jaye. Ye kalam nahi hai dosto, ye kuch aur hai.

फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

में जलते रहे। क्या हुआ ये मुझको, क्या हुआ है? और रोमांटिक सॉन्ग जिस देश में गंगा बहते हैं।

लाखों है निगाहों में जिंदगी के राहों में पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये एक मोहब्बत भरी और ये गीत है एक बार ना एक बार बार बार बार बार माइक मुकेश और करोड़ों को चुराने वाला करोड़ों का दिल चुराने वाला माइटी मुकेश और आशा जी आ रहा है एक बार ना सौ बार।

माई की बुके आशा जी का ये दिल लेकर नजराना का ये सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं कोई जलवा का ओर, और वो है पद्मांश श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, और इस गीत को बेटी और बेटा का सुनना चाहिए, मूवी का नाम है दोस्तों।

अगर तेरी जलवा खुदाई न होती तो क्या क्या होती। उसके बाद हम चलते हैं कि मेरे दिल रुबा ना गुस्सा, मेरे दिल रुबा मुझ पर खफा न हो। बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये पुराना सॉन्ग है दोस्तों, नुपर मोफी है दोस्तों। तो ये गीत आपको हम सुनाए जाते हैं, आओ सुना जाए।

मोहम्मद रफ़ी, परमात श्री मोहम्मद रफ़ी के साथ साथ मुकेश माइकी मुकेश के भी गीत बहुत बहुत पसंद करते हैं, तो एक माइकी मुकेश का भी हो जाए। ठोकर मौफी का नाम है, नेखती सेवन तक का ये हिट सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं ढूंढता हूं किसको, ये आपको तो पता होगा, और हम भी है तुम भी हो। मैती मुकेश गीता दत्त का ये सॉन्ग है मूवी मूवी मूवी, राज कपूर।

गीता दत्त लता जी का ये सॉन्ग है और इसमें काम किया है राज कपूर पद्मिनी के साथ। हम चलते हैं एक मनोज कुमार और मल्हार सिन्हा का मूवी जिसमें माइती मुकेश भी अपना गीत को गाया है और वो है हरियाली और रात।

मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता। सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स।

और एक लाइव सॉन्ग थे महेंद्र कपूर का सॉन्ग थे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता, जिसमें मनोज कुमार मल्हा सिन्हा ने काम किए हैं। करोड़ों का दिल चुराने वाला मैथी बुकेर ए नाइटिगेल लता जी का ये सॉन्ग है।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाउंड हिंदुस्तानी रात।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दर्दे करने को ये सॉन्ग थे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन, और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों। और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे, मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे और गीत है इस फिल्म में दोस्तों लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम।

0: की खैर तेरे बालों की खैर क्यों ना जुल्मी ओ जालिम ले जाना है तेरे।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निहति द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में, और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का। ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं। नौजात के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग, आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं, हावड़ा ब्रिज।

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

0: और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है।
1: तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं मूवी के नाम है राजा निकंदीन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जो तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरवानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है। एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहां सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

0: मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1990।
1: जी हाँ सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी हीरो से आप सुनेंगे डिंग डोंग बेबी सिंग सॉन्ग।

0: ding dong, oh baby, sing a song. खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। एक बहुत से सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, शबीर कुमार और लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी बेताब से हम पेश करते हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। सोनी मेरी सोनी सोनी अनवर के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सोनी महिवाल से, अनवर और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे सोनी मेरी सोनी सोनी, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। फ्रॉम द मूवी सड़क से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम जो ना आते तो हम मर जाते। मनहर उदास के साथ में अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सड़क से हमने पेश किए हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ओ दिल भर जानिया, फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं आपको सुनाने वाले हैं लता जी के साथ में शबीर कुमार जी।

लता जी के साथ में शबीर कुमार आपको सुनाने वाले थे वो दिलबर जानिया फ्रॉम द मूवी प्यार झुकता नहीं। इस तरह आशिकी का अशर छोड़ जाऊंगा अमित कुमार आपको सुनाने वाले हैं।

अमित कुमार आपको सुनाने वाले थे इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे समाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे न चाहे समाना अलका याग्निक के साथ में। अभिजीत आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक और गीत हो जाए आप सभी के वास्ते और गीत का बोल है राह हमें उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात हो गई।

जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे न जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से ज़ाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी, आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

0: होते।
1: अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले, मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।